सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 5:59 हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सबसे पहले ज्ञान ज्योति।

जी हाँ, प्रभु प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन हम दुनियावी कार्यों में भटकते हुए बस अपने इस अनमोल जीवन को खो बैठते हैं और अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाता। तब पछताने के अलावा और कोई भी साधन हमारे पास नहीं बचता। तभी तो कहते हैं कि समय रहते हमें समय का सदुपयोग करके ईश्वर को अपने मन में बसा लेना चाहिए और उनकी भक्ति में अपने मन को रत कर देना चाहिए। आम मनुष्य कहते हैं कि ये काफी कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को आसान कर देते हैं हमारे सद्गुरुदेव। और सद्गुरुदेव एक ऐसा जरिया है कि वो बड़ी आसानी से हमारा मिलन ईश्वर से करवा देते हैं और ईश्वर और मनुष्य के बीच में वे एक बड़ी ही मजबूत कड़ी का काम करते हैं। बस हमारी

अपने सद्गुरु और ईश्वर के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और वैसे भी सद्गुरु भी आसानी से नहीं मिलते, और जब वो मिल जाते हैं तो वो भी हर किसी को अपनी शरण में लेने से पहले परीक्षा तो ज़रूर करते हैं, और जो उनकी परीक्षा की कसौटी में खरा उतरता है वही उनका प्यारा हो जाता है, और उसी भक्त को वे ईश्वर के मार्ग पर चलाकर उसका जीवन संवार देते हैं। इसी के संदर्भ में एक लघु कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि आयोध धौम्य विद्वान और उद्दार गुरु थे। यद्यपि वे अपने शिष्यों के प्रति कठोर दिखाई देते थे, परंतु वे उन्हें योग्य बनाना चाहते थे। उनके शिष्यों में उपमन्यु नामक एक बालक भी था, जिसे गाय चराने का कार्य सौंपा गया था। एक दिन महर्षि ने उपमन्यु से उसके भोजन के विषय में पूछा। उसने बताया कि वह भिक्षा से प्राप्त अन्न खाता है। गुरु ने उसे आदेश दिया कि वह प्राप्त भिक्षा पहले गुरु को अर्पित करे और फिर उसके बाद ग्रहण करे। उपमन्यु ने आज्ञा का पालन किया। थोड़े दिनों बाद जब गुरुदेव ने पूछा, उपमन्यु आजकल क्या खाते हो? उपमन्यु ने बताया कि मैं एक बार की भिक्षा का अन्न गुरु को देकर दोबारा अपनी भिक्षा मांग लाता हूँ और उसे ग्रहण करता हूँ। महर्षि ने इसे धर्म के विरुद्ध बताया, तब वह गायों का दूध पीने लगा। इसे भी गुरु ने मना कर दिया। अंततः भूख से व्याकुल होकर उपमन्यु ने आग के विषैले पत्ते खा लिए, जिससे उसकी दृष्टि चली गई और वह एक कुएं में गिर पड़ा। जब वह आश्रम नहीं लौटा तो महर्षि उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। उनके निर्देश पर उपमन्यु ने स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमारों की स्तुति की। प्रसन्न होकर उन्होंने उसकी दृष्टि लौटा दी और उसकी गुरु भक्ति से प्रभावित होकर समस्त विद्याओं का वरदान दिया, और गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गुरु भक्ति की ये परीक्षा में तुम सफल हुए, अब तुम भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य बन गए हो। इस प्रकार गुरु का आशीर्वाद पाकर उपमन्यु हर समय ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगा और अंततः प्रभु को प्राप्त कर लिया। जी हाँ, इस लघु कथा से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि बेशक कठिनाइयाँ या परीक्षाएं हमारे जीवन में कितनी भी आएं, हमें भक्ति मार्ग और गुरु की आज्ञा का बिल्कुल भी इनकार या निषेध नहीं करना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से गुरु भक्ति करते हैं ना, तो ईश्वर भक्ति भी हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इस लघु कथा के बाद आइए अब बढ़ते हैं भक्ति संगीत की तरफ, और सबसे पहले नमन करते हैं विघ्नहर्ता गणपति जी महाराज के चरणों में, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें प्रभु भक्ति में लीन रहने का आशीर्वाद दें।

गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। बिल्कुल, सेवा करना हमारा धर्म है, फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। हमें तो बस प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इस जीवन की पहली सांस भी तुम्हारी अमानत थी और आखिरी हिचकी पर भी तुम्हारा ही हक होगा। हम तो बस इस मिट्टी के खिलौने हैं जिसे तुम अपनी मर्जी के रंगमंच पर नचाते हो। कब ये सांसों का धागा टूटेगा, कब ये मुसाफिर अपनी मंजिल को लौटेगा, ये सिर्फ तुम जानते हो। जो झोली में भर दिया वो तुम्हारा प्रसाद, और जो हंसते हंसते छीन लिया वो भी तुम्हारी ही कोई मर्जी होगी। हम नादान हैं जो इस सफ़र के अंत से डरते हैं। क्या पता जिसे हम अंत समझ रहे हैं वो तुम्हारे चरणों में एक नई और खूबसूरत शुरुआत हो। सत्य भी तुम हो और इस अनंत सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य भी तुम ही हो। तुम्हारे बिना हवा का एक झोंका भी मुमकिन नहीं है।

ईश्वर का सहारा जिसे मिल जाता है ना, उसे फिर दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए होता। जो भी ईश्वर उसे देते हैं वह बस उसी में खुश रहने का प्रयास करता है। इसलिए आइए हम भी सच्चे मन से ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे केवल मेरी मेहनत का ही देना, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के मिला वैभव मुझे अहंकारी बना देना देगा। और दया करना प्रभु की अनजाने में भी मुझसे किसी का बुरा ना हो, क्योंकि किसी की आंखों में आया आंसू मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं देगा। हे मेरे ईश्वर, मुझे वो समझ और सब्र देना कि मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकूं। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी मेरे पांव जमीन पर टिके रहें और मुश्किल वक्त में भी मेरा भरोसा डगमगाए नहीं। सामर्थ्य देना प्रभु ताकि मैं किसी गिरते हुए को थाम सकूं, और यदि मैं किसी का भला ना भी कर पाऊं तो कम से कम मेरे शब्दों या कर्मों से किसी के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचे। मेरी पूंजी बस मेरा साफ मन और आपकी भक्ति ही हो। ईश्वर से जब दीन होकर यही पुकार करेंगे ना, तो ईश्वर प्रसन्न होकर हमारे सिर पर अपनी करुणा भरा हाथ रख ही देंगे। मन में विश्वास करके देखिए।

मन में राम बसा ले। जी हाँ बिल्कुल, हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब हम तन मन से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और जब ईश्वर का सहारा मिल जाता है ना, तो वे उस जगह पर भी आपकी सहायता करते हैं जहाँ पर आपका कोई अपना आपके साथ खड़ा नहीं होता और आपके पास कोई भी शस्त्र या अस्त्र अपने बचाव के लिए नहीं होता। तभी तो कहते हैं कि सच्चे मन से ईश्वर को ही अपना साथी मानकर हमें अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करना चाहिए।

जी हाँ, ये जो भजन हैं ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, ये हमें प्रेरित करते हैं कि हमारा जीवन बहुत कम बचा है और जितना भी है उसमें हमें ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की साधना करने में अपने मन को लगाना चाहिए। सच्चे भक्तों की तो बस यही पुकार होती है कि हे ईश्वर, तमन्ना है मेरे मन की हर पल साथ तुम्हारा हो, जितनी भी सांसें चले मेरी हर सांस पर नाम तुम्हारा हो।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। इसी क्रम को आइए अब आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। इसी के साथ अब आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 और पूरे 47 सेकंड्स हो चुके हैं। आइए अब हम आपको अवगत करवा देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों तथा उनके प्रसारण समय से। सबसे पहले जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः 7:05 पर आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। लोक संसार कार्यक्रम का समय रहेगा 7:35। हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनिएगा 8:30 पर। प्रातः 10:05 पर हमारी आज की लघु वार्ता का विषय रहेगा 12 वर्षों में खेल और खिलाड़ियों हेतु भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं। पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम का समय रहेगा 10:15। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा 10:45 पर। दिन में 12 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत तथा 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। शाम 5:10 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम भजन संध्या। युव मंच कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 पर। सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी शाम 6:30 पर तथा 7:05 पर आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रम हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की समय सारिणी इस प्रकार है। प्रातः 8:35 से लेकर 9:17 तक, 9:30 से लेकर 10 बजे तक। दिन में 11:05 से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, 2:30 से लेकर 3 बजे तक, 3:10 से लेकर 4 बजे तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होने वाले समाचारों व कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार से है। प्रातः 6:55 पर संस्कृत, 7 बजे हिंदी समाचार, प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 10 बजे हिंदी समाचार, दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, शाम 5 बजे तथा 7 बजे हिंदी समाचार। 7:05 से लेकर आकाशवाणी दिल्ली से ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अफ्रीका बनाम इंग्लैंड मैच का आंखों देखा हाल मैच समाप्ति तक अनुप्रसारित किया जाएगा। इस दौरान रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 तथा रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 पर दिन में 11 बजे तथा 3 बजे प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर जिले की चिट्ठी अथवा सामयिक चर्चा, शाम 6 बजे तथा 7:45 पर प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत तथा 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेता काइशी इत्यनया सह वार्षिक शिखरसम्मेलनस्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखरसम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षट् मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदात्री सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35.1 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुगा ताकायची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ताकायची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

0: उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेन से व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गो से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर प्रातः के 7:05 हुए हैं।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
3: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
3: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर प्रातः के 7:06 और पूरे 33 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा और आज भी जानकारियाँ और मनोरंजन भरपूर लेकर इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी दोस्तों, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला शुरू करने से पहले आज का विचार जान लेते हैं और आज का विचार ये है कि विद्वान जन कहते हैं कि समय हमेशा परिवर्तनशील है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता।

जो दुख कभी खत्म नहीं होगा ऐसा लगता है वो भी एक दिन खत्म हो जाता है, और जो खुशी हमेशा रहेगी ऐसा महसूस होता है समय आने पर वो भी चली जाती है। इसलिए किसी को भी ज़्यादा कसकर मत पकड़ो, सेहत ही असली दौलत है। जब शरीर दुखता है तब पैसा सिर्फ कागज़ महसूस होता है। इसलिए अपने शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि आखिर में वही शरीर तुम्हें संभालेगा जब कोई और साथ नहीं होगा। और वैसे भी दोस्तों, रिश्ते मिट्टी के बर्तनों की तरह होते हैं, बनने में सालों लगते हैं लेकिन टूटने में एक पल भी नहीं लगता। अगर कोई रिश्ता आपके लिए मायने रखता है तो वहाँ अहंकार को बीच में मत आने दो, और जो सुकून शांत मन में है वो किसी महंगे सामान में नहीं है। लोग क्या कहेंगे, इस जाल से बाहर निकलिए। आपकी असली पहचान इस बात से नहीं है कि आपके पास क्या क्या है, इस बात से है कि आप भीतर से कितने शांत और संतुष्ट हैं। और दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात किसी ने कही है कि हमारे भीतर एक खूबसूरत और जादुई बगीचा है, हमारा मन। इस बगीचे में अच्छाई और बुराई दोनों के बीज पहले से मौजूद हैं। अब ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम रोज़ किसे पानी देते हैं। अगर रोज़ गुस्से को सींचेंगे तो वहाँ नफ़रत और कड़वाहट की कंटीली झाड़ियाँ उगेंगी, जो दूसरों को तो चुभेंगी ही, खुद आपको भी जख्मी करेंगी। अगर आप प्यार, दया और मुस्कान का बीज बोएंगे तो वहाँ सुकून और शांति के ऐसे फूल खिलेंगे जिनकी खुशबू से आपका पूरा जीवन महक उठेगा। याद रखें, हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतें ही हमारे विचारों को पानी देती हैं। जिस आदत को आप बढ़ावा दे रहे हैं, कल वही आपका चरित्र बन सकती है। इसलिए हमेशा खुशी, प्यार और दया को ही पानी देने का प्रयास करें, उसे सींचने का प्रयास करें, ताकि हमारा और हमारे आसपास रहने वालों का आने वाला जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो सके।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
3: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
10: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
9: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
11: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
9: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण।

0: आवरण
1: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी
0: UGC से मान्यता प्राप्त हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: जी श्रोताओ, इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपको बता दें कि जो विज्ञापनों से पहले हमने गीत आपको सुनाया था उसे हमने लिया था फिल्म गोलमाल से और गायक कलाकार थे किशोर कुमार। जी कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में अब वक्त है आज का जानकारियों का सिलसिला शुरू करने का और सबसे पहली जानकारी है आज के इतिहास की। दोस्तों ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार जुलाई 2 किसी वर्ष में दिन संख्या 183 है और भारत और विश्व इतिहास में 2 जुलाई का अपना ही एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। हम आपको जानकारी देंगे 2 जुलाई की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही बताएंगे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों के बारे में। आज के दिन जो प्रसिद्ध हस्तियां इस दुनिया को अलविदा कह गई थीं उनकी बात भी करेंगे और साथ ही आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण अवसरों की बात भी होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 2 जुलाई के दिन इतिहास में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। जी हाँ, इतिहास के पन्नों को अगर खंगालें और बात करें 2 जुलाई सन 1306 की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण आज ही के दिन किया था। तब ये दुर्ग कान्हड़ देव के भतीजे चौहान सरदार शीतल देव के अधिकार में था और सन 1698 में ब्रिटेन के थॉमस सेवरी ने पहले व्यावसायिक स्टीम इंजन का पेटेंट हासिल किया। बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला को उनकी शरण में रह रहे एक व्यक्ति मोहम्मद बेग ने सन 1757 में निर्ममतापूर्ण उनकी हत्या की थी। सन 1777 को अमेरिका के वोरमॉन्ट शहर में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी और सन 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट सन 1897 में करवाया था। जी हाँ, सन 1897 में ये आविष्कार हुआ था और उसका पेटेंट करवाया गया था और सन 1916 में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। सन 1962 को पहला वॉलमार्ट स्टोर कारोबार के लिए रोजर अरकांक्स में खोला गया था। वियतनाम गणराज्य का अंत सन 1976 में हुआ था और साम्यवादी उत्तरी वियतनाम ने समाजवादी वियतनाम गणराज्य के साथ जुड़ने की घोषणा की थी। सन 1983 में स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने मद्रास के निकट कल्पक्कम में काम करना शुरू किया था। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की पहली फिल्म सन 2001 में रिलीज हुई थी। सन 2002 में स्टीव फॉसेट गुब्बारे के जरिए दुनिया का भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। सन 2006 में इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान डेविड बेकहम ने अपना पद छोड़ा था। जी श्रोताओं, तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी जो इतिहास में 2 जुलाई के दिन घटी थी हमने आपके समक्ष रखी। अब बात करते हैं 2 जुलाई के दिन जन्मे कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में। जी हाँ, प्रसिद्ध जनकवि आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में आज ही के दिन हुआ था और 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य तूफानी सरोज का जन्म सन 1956 में हुआ था। बात करें सन 1843 की, तो अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं 2 जुलाई के दिन जो महान हस्तियां इस दुनिया को अलविदा कह गई थी उनकी। तो सन 1843 में होम्योपैथी का आविष्कार करने वाले क्रिस्टियन फ्रीडरिश सैमुअल हैनीमैन का निधन फ्रांस के पेरिस में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन सन 1950 में हुआ था। आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण अवसरों की अगर हम बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस मनाया जा रहा है। जी श्रोताओं, ये थी आज के इतिहास की जानकारी और इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में वक्त है आपको एक और गीत सुनवाने का। जी हाँ, गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये विज्ञापन।
3: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
4: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
5: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जी श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म वक्त की दीवार से, और गायक कलाकार हैं आशा भोंसले और किशोर कुमार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

जी श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे देते हैं कुछ ताज़ा तरीन खबरों की। समाचार पत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वाणिज्यिक सिलेंडर 183 रुपए सस्ता, नायरा ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए। जी हां, पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपए व विमान ईंधन एटीएफ में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक सिलेंडर दिल्ली में अब 2930 रुपए में मिलेगा। वहीं निजी तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। अगली खबर के अनुसार श्री अमरनाथ यात्रा के लिए मौके पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पिछले कल यानी बुधवार से शुरू हो गए। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन की पवित्र यात्रा 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया जाएगा। 3 दिनी दौरे पर भारत पहुंची जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची। जी हां, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची पिछले कल यानी बुधवार शाम 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची। इस दौरान वह 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगी। फार्मासिस्ट बनने के लिए देना होगा राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट। जी हां, फार्मासिस्ट बनने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2026 का संशोधित मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित कानून के तहत 1948 के फार्मेसी एक्ट को खत्म कर उसकी जगह नेशनल फार्मेसी कमीशन बनाया जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधी प्रैक्टिस नहीं की जा सकेगी। फार्मासिस्ट बनने के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा।

जी श्रोताओं, ये तो थी कुछ ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी। प्रातः के 7:35 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आज का लोक संसार कार्यक्रम।

लोक संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में भी हम हिमाचल प्रदेश से जुड़ी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साथ ही ज़िला हमीरपुर से जुड़ी खबरों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं और कुछ लोकगीतों से आपका मनोरंजन तो हम ज़रूर करवाएंगे। जी श्रोताओं, आज के लोक संसार कार्यक्रम में हम हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले की बात करेंगे और घूमने फिरने की बात हमने आपके साथ पहले भी जानकारी साझा की थी। आज हम बात करेंगे ऊनी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध चंबा।

जी हाँ, ये जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। जी हाँ, रावी की लहरों के साथ बहती ठंडक और भरमौर पांगी की बर्फीली चोटियों के बीच चंबा की ऊन जन्म लेती है। ये ऊन केवल शरीर को गर्म रखने का साधन नहीं, बल्कि पहाड़ों में जीने का सहारा, मेहनत की पहचान और आत्मसम्मान की द्योतक है। चंबा ज़िला अपनी मिनिएचर पेंटिंग और ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ ऊनी हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा के लिए भी जाना जाता है। चंबा में ऊन का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ की ठंडी जलवायु और ऊंचाई वाले क्षेत्र भेड़ बकरी पालन के लिए आदर्श माने जाते हैं। पशुपालन से जुड़े आंकड़ों के अनुसार ज़िले में लगभग 2.5 से 3 लाख भेड़ बकरियाँ हैं, जिनसे हर वर्ष लगभग 3 से 4 हज़ार मीट्रिक टन ऊन प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, और इसी ऊन से गांवों में पट्टू, चादर, शॉल, लोई, टोपी और कंबल तैयार किए जाते हैं, जो चंबा की पहचान बन चुके हैं। चंबा ऊन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मजबूती और प्राकृतिक गर्माहट। भरमौर और पांगी क्षेत्र की ऊन मोटी और भारी होती है, जो शून्य से नीचे तापमान में भी शरीर को गर्म रखती है। यहाँ का पारंपरिक पट्टू आज भी जनजातीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये केवल कपड़ा नहीं, बल्कि पहाड़ों की जरूरत, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक है। इस ऊन उद्योग से 20,000 से अधिक परिवार सीधे जुड़े हुए हैं, जिसमें महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है।

जी हाँ, गांव में आज भी घर घर चरखे पर कताई और हथकरघे पर बुनाई होती है। अनुमान के अनुसार ऊन आधारित कार्यों से एक परिवार को सालाना 40 से 60 हजार रुपए तक की अतिरिक्त आय मिल जाती है। इसके बनने में कई चरण होते हैं जिनमें गांव के हर हाथ की भूमिका होती है। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में भेड़ों की ऊन काटी जाती है। ये काम अनुभवी लोग करते हैं ताकि भेड़ों को कोई नुकसान ना हो। एक भेड़ से औसतन 1.5 से 2 किलो ऊन प्राप्त होती है। काटी गई ऊन में मिट्टी, घास और धूल होती है। इसे पानी में धोकर साफ किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। सूखी हुई ऊन को महिलाएं चरखे या तकली पर कातती हैं और कच्ची ऊन धीरे धीरे मजबूत धागे में बदल जाती है। यही धागा आगे कपड़े का रूप लेता है। पारंपरिक रूप से ऊन को अखरोट की छाल, बुरांश, हल्दी और जड़ी बूटियों से रंगा जाता है। धागे को हथकरघे पर बुनकर पट्टू, शॉल, कंबल और चादरें तैयार की जाती हैं। एक शॉल को तैयार होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। बुने हुए कपड़े को काट छांट कर अंतिम रूप दिया जाता है। फिर इन्हें स्थानीय मेलों, सहकारी दुकानों और पर्यटन बाजारों में बेचा जाता है। आज के युवा पारंपरिक डिजाइनों में आधुनिक रंग और शैली जोड़कर इसे नए बाजारों तक पहुंचा रही हैं और अपनी आजीविका को सुदृढ़ बना रही हैं।

जी श्रोताओं, तो ये तो हमने आपको जानकारी दी जिला चंबा के ऊनी हस्तशिल्प के बारे में। अब आइए चंबा की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि ये बेहद खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट्स पर जाने के लिए बेकरार हो रहा है। जी हाँ, संजू और बिमला राठौर का गाया हुआ ये लोकगीत आइए अब सुनते हैं, और गीत के बाद अगली जानकारी हम आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएंगे।

0: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
1: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
0: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
2: जी श्रोताओ, इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद आइए अब हम आपको जानकारी दे देते हैं जिला हमीरपुर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों की।

सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर को मिलेगा प्रदेश का पहला रिंग रोड, शहर के बाहर जुड़ेंगे दो NH, जाम से मिल जाएगी निजात। जी हाँ, प्रदेश का पहला 27 किलोमीटर लंबा रिंग रोड हमीरपुर के पास बनाया जाएगा। ये दो लेन सड़क होगी जो शिमला हमीरपुर कांगड़ा और मंडी अवाह देवी हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्गों को कोहली क्षेत्र के पास शहर के बाहर आपस में जोड़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रस्तावित रिंग रोड अर्धवृत्ताकार होगा और उत्तर में कोहली से टौणी देवी के बीच तथा दक्षिण में कोहली से चील वाहल क्षेत्र तक राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ेगा। प्राधिकरण के परियोजना निदेशक राकेश यादव ने बताया कि रिंग रोड निर्माण के लिए परामर्शदाता ने अध्ययन और सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। सर्वे पूरा होने के बाद आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने पर उसे स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना हिमाचल प्रदेश का पहला रिंग रोड होगी और इसे शीघ्र आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं।

0: अन्य खबर के अनुसार मेडिकल कॉलेज में 5 विभाग, 1 माह के अंदर जोल सप्पड़ होंगे शिफ्ट, फर्नीचर के ऑर्डर जारी। नए भवन में मरीजों को वहां ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर और वार्ड की मिलेगी सुविधा। जी हां, जिला मुख्यालय हमीरपुर से 9 किलोमीटर दूर जोल सप्पड़ स्थित मेडिकल कॉलेज के नए भवन में 5 विभाग शिफ्ट होंगे। यहां इन विभागों से संबंधित मरीजों को ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर और टेस्टिंग से लेकर वार्ड तक की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए कॉलेज प्रशासन ने आखिर फाइनल अप्रूवल तैयार कर ली है। मरीजों की सुविधा के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य जरूरी सुविधाओं को जोड़ा जा चुका है। हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज का पुराना भवन जो मौजूदा समय में चल रहा है, वह बेहद छोटा पड़ता जा रहा है। बेहद कम स्पेस में सभी विभागों को चलाया जा रहा है। शुरुआती दौर में इन विभागों के शिफ्ट हो जाने से यहाँ स्पेस भी खुल सकेगा और मरीजों की सुविधा भी और आसान हो जाएगी। वैसे जो नया भवन बना हुआ है, वहाँ अस्पताल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पिछले 2-3 साल से बनकर तैयार हो चुके थे। पहले इन्हें हैंडओवर करने की प्रक्रिया चली और अब यहाँ शिफ्टिंग का काम हो रहा है। डॉक्टर रमेश भारती, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मुताबिक, शुरुआत में 5 विभागों को नए भवन में शिफ्ट करने के कार्य पर काम किया जा रहा है। मरीजों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए वहाँ उनसे संबंधित हर सुविधा को जोड़ा जा रहा है। फर्नीचर से संबंधित ऑर्डर सरकार की ओर से हो चुका है। विद्यार्थी सीखेंगे हस्तशिल्प कला के गुर। जी हाँ, पीएम श्री बलिदानी कैप्टन मृदुल शर्मा स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में 3 दिवसीय कला शिल्प प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का आयोजन विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हस्तशिल्प सेवा केंद्र कुल्लू के सहयोग से किया जा रहा है। इसके साथ जो विद्यार्थियों को 120 विद्यार्थियों को विभिन्न पारंपरिक हस्तकलाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि उन्हें आगामी समय में लघु स्वरोजगार संचालित करने में सहायता मिल सके। जेबीटी का दस्तावेज सत्यापन 7 से, स्टाफ नर्स का संशोधित फाइनल परिणाम भी घोषित, 308 अभ्यर्थियों का चयन। जी हां, प्रदेश राज्य आयोग चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि जेबीटी पोस्ट कोड 25004 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 जुलाई से प्रारंभ की जा रही है। इसका शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक अन्य खबर के अनुसार गांधी चौक में बड़े आयोजनों पर रोक की तैयारी, वैकल्पिक स्थल तय। जी हां, शहर के गांधी चौक में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बड़े आयोजनों पर जल्द रोक लग सकती है। व्यापार मंडल की मांग पर जिला प्रशासन ने ऐसे आयोजनों के लिए ट्राला यूनियन के पास भूमि चिन्हित की है। और वहीं नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर राम प्रसाद ने बताया कि ट्राला यूनियन के पास वन भूमि चिन्हित की गई है। एसडीएम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये रिपोर्ट उपायुक्त ने प्राप्त करने के बाद पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि बड़े आयोजनों की अनुमति गांधी चौक में ना दी जाए। जी श्रोताओं, तो ये तो थी जिला हमीरपुर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई। अब कार्यक्रम में वक्त है आपको एक और लोकगीत सुनवाने का। जी हाँ, ये लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद। जी हाँ, ये है कमर्शियल ब्रेक।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
0: जी श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं प्यार चंद का गाया हुआ ये पहाड़ी लोकगीत।

जी हाँ, प्यार चंद के गाए इस लोकगीत के साथ ही अब आज का लोक संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा को अब दीजिए इजाजत।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल

0: प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में

0: 31वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गो पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब। दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सीमित रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड एनुअल समिट विद हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए ताकाईची इन न्यू दिल्ली टुडे। ईपीएफओ नोटिफाइज 8.25% इंटरेस्ट रेट ऑन ईपीएफ डिपॉजिट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। Center issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic collaboration. These are semiconductors, critical minerals, pharmaceuticals, clean energy and information, and communication technology. The India-Japan relationship is marked by frequent high-level political engagement. Most recently, Prime Minister Narendra Modi interacted with the Japanese Prime Minister during the G7 summit in France. The two leaders had earlier met on the sidelines of the G20 summit in Johannesburg in November last year. The annual summit remains the flagship platform driving the strategic agenda of the partnership. An action plan for Japan-India human resource exchange and cooperation was launched during the annual summit in 2025, which envisages two-way exchange of 5 lakh personnel in 5 years, including 50,000 skilled and semi-skilled personnel from India to Japan. Apart from annual summits, high-level exchanges and meetings regularly take place at foreign Minister, Defense Minister, NSA, Foreign Secretary, and other levels. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Employees Provident Fund Organization, EPFO, has officially notified an 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. The ratings have been declared following approval of the Ministry of Railway, for the Ministry of Labour and Employment as per the EPF scheme 1952. It has directed regional and zonal offices to credit the approved interest to members' EPF accounts. The government issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. According to the sources, the Ministry of Electronics and Information Technology has directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. More from our correspondent.
4: The sources said that the ministry has taken note of a public announcement by WhatsApp that it has commenced a phased global rollout, including in India, of its usernames feature. It said that once the feature is enabled, the recipient's phone number will no longer be visible to a first-time contact and that an optional username key may be set as an additional control. Sources said there are concerns that the feature may increase incidence of online frauds, phishing, digital arrest, scams, and impersonation attacks. Concerns have also been raised that the feature may facilitate impersonation and identity spoofing. The sources further said that the ministry has directed Meta to furnish a detailed explanation on this feature within 3 days and not roll out the feature until consultation on the matter is over. Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: The Delhi government has notified a permanent winter pollution master plan that will remain in force every year from 1st of November to 20th of February to curb seasonal air pollution in the national capital. We have a report.
5: Chief Minister Rekha Gupta said the new framework consolidates existing pollution control measures into a single set of rules, ensuring timely implementation without issuing separate orders every winter. Vehicles without a valid pollution under control certificate will not be supplied fuel at petrol pumps throughout the year. From 1st November to 31st January, entry of non-Delhi registered vehicles below BS6 emission standards will also be prohibited. The government has also announced that parking charges at authorized parking facilities will be doubled from 1st November to 28th February, while 50% of employees in government and private offices will work from home from 1st November to 31st January. Demolition work and open dust generating construction activities will remain prohibited from 1st November to 31st January, except for essential public infrastructure projects. Large commercial buildings and major construction sites will be required to install anti-smog guns with Suparna and Arzu. Chirag Jha from News Desk.
2: The government has given 1 year extension to Foreign Secretary Vikram Misri till 14th of July next year. Mr. Misri assumed charge as Foreign Secretary on 15th July 2024. He was India's ambassador to China from January 2019 to December 2021. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the first batch of pilgrims of the annual Sri Amarnath Ji Yatra from Bhagwati Nagar Base Camp in Jammu this morning. The 57-day annual pilgrimage officially commences across the twin tracks of Kashmir tomorrow and is scheduled to conclude on August 28. The first convoy of pilgrims was dispatched from Jammu early in the morning under tight security. The Yatra takes place via the traditional 48-kilometre Nunban Pehelgram route in Anantnag district and the shorter 14-kilometre Baltal route in Gandharbal district. The centre has assured full support to Assam in dealing with the recent flood situation. The assurance was given by Union Minister for Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan and Union Minister for Parliamentary Affairs Kiran Rijiju during a flood review meeting with the Assam government in Guwahati last evening. The union ministers reviewed the latest flood situation in Assam, including in the worst affected district of Dhemaji, and assessed the preliminary extent of the damage. Assam Chief Secretary Ravi Kota informed the union ministers that 13 districts have been affected by this year's first major flood, impacting around 72,000 people. The India Meteorological Department IMD has said southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 days. The Met Department has also forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra during the next 2 days. People in Delhi woke up to refreshing showers this morning. Rain lashed several parts of the city, bringing much needed relief from the sweltering heat. The monsoon is advancing rapidly across Madhya Pradesh and is likely to reach the Ujjain and Gwalior Chambal divisions today. Several districts in the Sagar and Bhopal divisions received heavy rainfall yesterday. Waterlogging was reported from many parts of Indore and Mau, where some vehicles were stranded in flooded areas. In Sihor district, continuous rain has led to flood-like conditions in low-lying areas, with water entering several residential colonies. The indirect talks between Iran and the US through mediator concluded in Doha yesterday. According to a statement by the Qatari government, both sides agreed to continue discussions after the funeral ceremonies for Iran's former supreme leader, Ali Khamenei, on 9th of this month. Talking to media, U.S. Vice President J.D. Vance said the Doha negotiations were progressing well, with technical-level discussions already underway. He said the next phase would focus on Iran's nuclear program and added that the talks were being held from a position of strength after recent U.S. military action.
6: Well, right now, the technical negotiators are sitting down with the Iranians, with the Qataris, and with others in Doha. You know, talking about some of the details here, making sure commercial traffic really does. It's already started in an amazing direction. We've got now oil at $68. We've got gas prices starting to come down. But really just ensuring that we continue to make the progress on that. And that's what they're focused on. And then, you know, we're going to, obviously, we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now, the talks are going well. It's still pretty early, but talks are going well.
2: A series of strong explosions hit Kyiv overnight after President Volodymyr Zelensky warned that Russia was preparing a major strike. Ukrainian officials said Russia fired missiles and drones at the capital, causing fires and damage to residential buildings. Air raid sirens sounded across the city and many residents took shelter in metro stations. On to sports. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time round of 32 and qualify for the round of 16. Yuri Thielemans scored a 125th minute penalty to seal a dramatic 3-2 victory and extend Belgium's unbeaten run to 17 matches. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002 this morning. They defeated Bosnia and Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, wherein they will take on Belgium. Last night, England defeated the Democratic Republic of the Congo 2-1 in Atlanta, with Harry Kane scoring twice in the final 15 minutes. England will face co-host Mexico in the round of 16 on July 6th. In another round 32 clash, Mexico beat Ecuador 2-0 in Mexico City to reach the round of 16. France defeated Sweden 3-0 in New York, while Norway edged Ivory Coast 2-1 in Texas to book their place in the last 16. In men's cricket, the first T20 international between India and England was abandoned due to rain in Chesterley Street last night. The five-match series now stands level at 0-0. Opting to bat first, India scored 189 for 7 in stipulated 20 overs, with skipper Shreyas Iyer scoring highest 68 runs of 47 balls. Opening batter Abhishek Sharma also scored 59 runs, while Shivam Dubey remained not out at 42 runs. For England, Saqib Mahmood bagged 3 wickets. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
7: Thank you, Shagun. The Asian Age, quoting Prime Minister Narendra Modi, headlines, "Government's digital push has transformed India," elaborating that 11 years of Digital India initiatives has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Economic indicators flash green in June. Growth engine revving despite global roadblocks, writes the Economic Times. India's economy ended the first quarter of financial year 2020. 2027 on a strong footing, with various high-frequency indicators showing robust growth in June, reflecting resilience despite the West Asia war and other external headwinds. The Hindustan Times opens with the headline, ATF commercial LPG rates cut as crude prices ease, while the Hindu writes, commercial LPG prices reduced by 183 rupees per refill. The Times of India, under a picture of new Indian Army Chief General Dhirat Seth saluting his father, Lieutenant General Krishna Mohan Seth, retired, informs, General Seth said his aim would be to build a tech-enabled, future-ready army capable of operating effectively across multiple domains, while the statesman informs, new Army Chief outlines Vijay Vision, stresses modernization of army. And finally, The Times of India informs that University of Minnesota scientists, under a project called Spud Cell, built from scratch synthetic cells that can grow, feed and reproduce like a natural cell, claiming the work could in time lead to made-to-order living machines. And with that, it's back to you, Shagun.
2: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
8: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक। हिमाचल डायरी के आज के अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हां, आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ खास खबरों की जानकारी। CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को मेरिट पर नियुक्ति देने की तैयारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश के 147 संचालित सरकारी CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों को मेरिट आधारित व्यवस्था के तहत ही नियुक्तियां देने की संभावना बन गई है। पेंशनरों को ऐप से देना होगा जीवन प्रमाण पत्र। हिमाचल में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगी सत्यापन प्रक्रिया। जी हां, हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी ने वर्ष 2026-27 के लिए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इन जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट केवल जीवन प्रमाण डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जमा करना होगा। हालांकि चिकित्सीय रूप से अक्षम पेंशनरों को राहत देते हुए उन्हें डॉक्टर से प्रमाणित मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की अनुमति भी दी गई है। टीजीटी मेडिकल के 166 अभ्यर्थियों की को नियुक्ति, 10 दिन में देनी होगी ज्वाइनिंग। जी हां, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश, जॉब ट्रेनी आधार पर होगी भर्ती। जी हां, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी मेडिकल के 166 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर की सिफारिश के आधार पर इन अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में ट्रेनी आधार पर नियुक्त किया गया है। नियुक्त उम्मीदवारों को 10 दिन के भीतर संबंधित स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना होगा और निदेशालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनी अवधि में 22,860 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा, जो नियमित पद के प्रथम वेतन स्तर के 60% के बराबर है। नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिए होगी और प्रदर्शन संतोषजनक रहने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।

एचआरटीसी हमीरपुर डिपो को मिली 35 इलेक्ट्रिक बसें, जल्द दौड़ेंगी सड़कों पर, चार्जिंग क्षमता बढ़ाने के लिए दो नए पॉइंट लगेंगे। जी हां, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के हमीरपुर डिपो को 35 नई इलेक्ट्रिक बसें आवंटित हुई हैं। इन बसों की प्री इंस्पेक्शन प्रक्रिया जारी है। निरीक्षण पूरा होने के बाद इन्हें विभिन्न रूटों पर चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। एचपीयू में स्नातकोत्तर व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू। नेट के कारण स्थगित हुई थी परीक्षाएं, नए प्रवेश पत्र के साथ पहुंचे छात्र। जी हां, आयुर्विज्ञान पंचकर्मा और वेलनेस सेंटर हमीरपुर की तरफ से पंचकर्मा टेक्नीशियन का कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि स्किल इंडिया द्वारा एफिलिएटेड है। और इस कोर्स की जो हम ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ये कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 और 3 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी नालों से और खड्डों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है। हिमाचल डायरी के आज के अंक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:35 हुए हैं। अब से लेकर 9:17 तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

दलेर मेहंदी, डीएमसी और शाश्वत सचदेव की आवाज़ में आप सुन रहे थे उरी फिल्म से ये गीत, और इसे लिखा डीएमसी ने और संगीत से सजाया शाश्वत सचदेव ने। तो हमने आपसे पूछा था कि क्या आपकी नींद आज हुई है पूरी, और कुछ इसी तरह से सूरमा बनकर हम करते हैं ये काम कि अपनी नींद को कर देते हैं बिल्कुल नज़रअंदाज, और कभी भी पूरी नहीं होती हमारी नींद। और ऐसी शिकायत भी अक्सर बनी रहती है कि भाई ज़िंदगी में सब चीज़ें पूरी होती हैं लेकिन नींद पूरी नहीं होती, जबकि नींद शरीर की सबसे ज़रूरी आवश्यकता है। और जब हम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारा शरीर स्वयं को मरम्मत करता है खुद की, या कहें कि जो थकान होती है अंगों में, कहीं तकलीफ होती है, वो सब दूर करने के लिए शरीर को भी इतना वक्त चाहिए आराम का। लेकिन हम तो बने रहते हैं सूरमा, और हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ ना कुछ काम करते रहना है। ख़ास तौर से इन दिनों जो हम काम करते हैं वो ये है कि देर तक जागते हैं फिर देर तक सोते हैं, लेकिन एक समय निश्चित है जिसमें शरीर मरम्मत का काम करता है। उस ज़्यादा देर अगर आप सोते रहते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा नहीं होता, ऐसा तो वैज्ञानिक तत्व भी कहते हैं कि जो एक वक्त निर्धारित है नींद का, कह सकते हैं रात का जो समय है, उस समय अगर आप सो जाते हैं, देर रात तक अगर आप जागते हैं, तो आपके शरीर को उससे नुकसान ही है। और उसके बाद भले ही आप घड़ी देखकर 7-8 घंटे की नींद ले लें, लेकिन उसका उतना फ़ायदा तो नहीं होता। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है?

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और हम आपको याद दिला दें कि सुबह 10 आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, जिसके अंतर्गत आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक और समीक्षक के साथ ही लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। और आपको ये भी याद दिला दें कि दोपहर 1 से रोजाना आप सुनते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको मिलेगा विविध भारती का पेज। और वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सुई धागा फिल्म का ये गीत, वरुण ग्रोवर ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं नींद की, क्योंकि बाकी सब तो जिंदगी में बढ़िया है लेकिन नींद का क्या करें जो पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए हम देर तक जागते हैं और देर तक सोते भी हैं। कुछ लोग, सबको तो सोने का नहीं मिलता देर तक, तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर कोई भी काम हमने किया हो और उसका श्रेय किसी को मिले तो हमें बुरा लगता है। वैसे किसी और ने कुछ गलती की हो और उसकी वजह से अगर हमें सज़ा मिले तो भी बुरा लगता है। तो अक्सर जो नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती उसका दोष मिलता है मोबाइल को, और साथ ही जब हम जाग रहे हैं लेकिन सारा दोष मिल रहा है मोबाइल को, कोई सीरीज़ को कि भाई इतनी अच्छी थी कि हम देखते रह गए, या फिर दोस्तों को कि भाई उनका फ़ोन आ गया था या हमारे दोस्त आ गए थे हमें बुलाकर ले गए। तो ये क्या तरीका है, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करने वाले हैं, निर्णय तो हमारे ऊपर ही है ना। चलिए ठीक है, दोस्तों पर आपका काबू ना चल पाए लेकिन मोबाइल पर और किसी सीरीज़ को देखने पर तो आपका बिल्कुल काबू रहता है। मोबाइल का भी आपके हाथ में ही पूरा कंट्रोल है, और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं, जहाँ टीवी पर कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं उसके लिए भी रिमोट भी आपके हाथ में ही है। तो ज़रा याद कीजिए वो दिन जब आप समय से सोते थे, समय से जागते थे, और उन दिनों को अगर आप याद करेंगे तो आप खुद कह उठेंगे कि भाई वो दिन क्या दिन थे।

तुषार जोशी की आवाज़ में छिछोरे फिल्म का गीत आपने सुना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

स्टीवन बेन और दीक्षा तूर की आवाज़ों में आपने सुना सनक फिल्म से ये गीत, मनोज यादव और समीर अंजान के बोल, नदीम श्रवण और चिरंतन भट्ट का संगीत। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में, पुलकित ऋषि ने से लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नज़र लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, असली बात कौन बताएगा, भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि भाई इस समय में मुझे सोना है, और रोज़ाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी हो। कोई बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ज़रूरी मेल भेजना हो, बहुत ज़रूरी संदेश भेजना हो, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें वगैरह देखने के लिए ना करें फ़ोन का इस्तेमाल। कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोज़ाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है। साथ ही आपको भी पता चलता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएँ हैं आपकी। और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फ़ोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त, तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है, तो वो जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है या बहुत ज़्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक ज़िद पाल लें कि सोना है समय पर और रोज़ाना, और ये ज़िद अगर आप पाल लेंगे तो एक अच्छी ज़िद है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये ज़िद ज़रूर पालेंगे।

निकिता गांधी की आवाज़ में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई, किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इतनी जल्दी तो जल्दी सोने की आदत पड़ेगी नहीं, तो जब तक आप देर तक जाग रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें कि विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का वक्त है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की, कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी, और इसीलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है, जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं थे, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तू इन स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम क्यों भेज रहा है कि तू इन स्विंगर डालता है? ग्रिप छुप।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: ना मोड़े माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार की सब कमेटी ने सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां करने की सिफारिश की। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपए घटाई। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन ने बदली धर्मशाला की तस्वीर। मॉनसून के दौरान शिमला में 3 महीने तैनात रहेगी एनडीआरएफ की टीम। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य के 158 सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। कैबिनेट सब कमेटी की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई बैठक में ये सिफारिशें की गई। अब इस सिफारिश पर मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेंगे। इन स्कूलों में तैनाती के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई चयन परीक्षा में 6,084 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि इन स्कूलों में लगभग 6,200 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्रदेश सरकार द्वारा खोले जा रहे इन सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण अभी तक लगभग 500 विद्यार्थी इन स्कूलों को छोड़ चुके हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपए की कमी की है। तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की दरों में भी 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। जानकारी के अनुसार अब 19 किलो वाला वाणिज्यिक सिलेंडर 2,930 रुपए में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बीते 4 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना ने पर्यटन नगरी धर्मशाला को नया रंग रूप दे दिया है। बीते 5 सालों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धर्मशाला में जहां लोगों को मेट्रो शहरों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है, वहीं धर्मशाला शहर विकास के मॉडल के रूप में भी उभरा है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना ने 5 वर्षों में धर्मशाला की तस्वीर बदल दी है। शहर में प्रस्तावित 80 विकास परियोजनाओं में अधिकांश पूरी हो चुकी हैं, जबकि स्मार्ट रोड, क्लब हाउस के साथ फुटबॉल ग्राउंड और आईएसबीटी के पास पार्किंग जैसी कुछ परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के सीईओ जफर इकबाल ने बताया कि धर्मशाला को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में पहचान मिली है। नड्डी और गमरू में रूट जोन ट्रीटमेंट प्लांट तथा 15 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और ई मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए इन कार्यों ने धर्मशाला को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और नागरिक सुविधाओं से समृद्ध शहर के रूप में स्थापित किया है। आने वाले समय में शेष परियोजनाओं के पूरा होने के साथ धर्मशाला स्मार्ट और सतत शहरी विकास का एक और मजबूत उदाहरण बनकर उभरेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: शिमला जिले में मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की एक टीम को शिमला में तैनात किया है। ये टीम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने की अवधि के लिए शिमला के ढली में तैनात रहेगी। इस टीम में 30 सदस्य शामिल हैं। शिमला की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा ने कहा कि जिला प्रशासन मॉनसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता भाजपा के संपर्क में है और पार्टी में शामिल होने के इच्छुक है। केशव चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और पंचायत चुनाव के नतीजे इसका स्पष्ट प्रमाण है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने कहा है कि 1 महीने में 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। केशव चौहान ने कहा कि भाजपा को छोड़ कांग्रेस अपनी चिंता करे, क्योंकि राज्य की जनता कांग्रेस के झूठ से तंग आ चुकी है।
2: मेरा कांग्रेस के महासचिव से आग्रह है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दें। अभी प्रदेश भर में पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय में उनकी हार हुई है, उसको छुपाने का, उसको दबाने के लिए ये इस प्रकार के प्रोपोगंडा कर रही है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा हुई। इस दौरान मंडी जिला के ओट के पास पहाड़ से गिरी एक चट्टान की चपेट में आने से एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून से जुड़ी घटनाओं में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज चंबा जिले के पांगी और लाहौल घाटी में 2 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं भी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। इधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जिले में ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ आने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सचेत रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। इधर लोक निर्माण विभाग ने मानसून को देखते हुए विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। चंबा जिला उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर प्रमोद शाह ने जिले के सभी बागवानों से सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बदलते मौसम के कारण ओलावृष्टि, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बागवानी को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए मौसम आधारित फसल बीमा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। डॉक्टर प्रमोद शाह ने कहा कि बागवान इस योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा कर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यदि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है तो बीमित बागवानों को योजना के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है।
3: हम लोगों की तो यही सलाह देती है फार्मर को कि अपना जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको टाइमली उसको आप जरूर अवेल करें, क्योंकि मौसम का कभी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अनुमान कब इसका बदलाव आ जाए।
0: हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत बलोह की सरपंच लता देवी का इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित महिला राजनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। इस राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यक्रम के तहत लता देवी को भारतीय संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का मौका मिला। लता देवी ने कहा कि एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सरपंच के रूप में लोकतंत्र के सर्वोच्च विधायी मंच को निकट से देखने और उसकी कार्यप्रणाली को समझने का यह अवसर उनके सार्वजनिक जीवन का अत्यंत प्रेरणादायी और गौरवपूर्ण क्षण रहा। प्रदेशव्यापी एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स और जिला पुलिस व औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में दवा विक्रेता, मेडिकल की दुकानें, औषधि थोक विक्रेता और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का सघन निरीक्षण किया गया। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, लाहौल चंबा में 3 जगह बादल फटे, सड़कें ध्वस्त, मंडी में पत्थर लगने से महिला की मौत। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अंततः पूरे प्रदेश में पहुंचा मानसून, लाहौल स्पीति के जामलना में, चंबा के साहो में बादल फटने से नुकसान। पंजाब केसरी लिखता है, सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा में आज भारी वर्षा की चेतावनी। शिमला में 50 लाख के जेवर चोरी मामले में पंजाब से 2 महिलाएं गिरफ्तार, 40 तोला सोना भी बरामद। शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, शिमला पुलिस को सीसीटीवी और तकनीकी जांच से मिला आरोपियों का सुराग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की सब कमेटी ने CBSE संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां कराने की सिफारिश की। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपए घटाई। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन ने बदली धर्मशाला की तस्वीर। मॉनसून के दौरान शिमला में 3 महीने तैनात रहेगी NDRF की टीम और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय है। आज राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajno ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।

0: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा।

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला।

0: तार क्यों भाई, बादल क्यों भाई मोती, मैं सचेता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

0: इसलिए।
1: दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना वर्ष 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर से ये योजना लागू रहेगी। सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था। वे जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत थे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। ये हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। नए नियमों के अनुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर ईंधन नहीं मिलेगा। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है।

0: और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से अपनी हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:05 हुए हैं।
2: द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन।
1: प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारी आज की लघु वार्ता, जिसका विषय है 12 वर्षों में खेल और खिलाड़ियों हेतु भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं।

खेलों को केवल मनोरंजन या शारीरिक व्यायाम के रूप में देखना एक बहुत छोटा दृष्टिकोण है। वास्तव में खेल और किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम है और खेलों के जरिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। जी हाँ, एक खेल साक्षर समाज में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ जैसे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग काफ़ी कम होते हैं। इसके साथ साथ खेल युवाओं में तनाव, अवसाद और एंग्जाइटी को कम करते हैं। ये अनुशासन, टीम वर्क और हार जीत को शालीनता से स्वीकार करने की भावना सिखाते हैं और खेल मैदान पर जाति, धर्म या क्षेत्र का कोई स्थान नहीं होता। जब पूरा देश भारतीय टीम या किसी एथलीट के लिए चीयर करता है तो राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है और साथ साथ युवाओं को खेलों से जोड़कर उन्हें नशे की लत और अपराध और असामाजिक गतिविधियों के रास्ते से दूर रखा जा सकता है। वैश्विक पटल की अगर हम बात करें तो जब ओलंपिक या एशियाई खेलों में भारत का तिरंगा ऊपर जाता है और राष्ट्रगान गूंजता है तो वह केवल एक पदक नहीं होता बल्कि वैश्विक मंच पर देश की बढ़ती हुई साख और सॉफ्ट पावर का प्रतीक होता है। तो 12 वर्षों में खेल और खिलाड़ियों हेतु भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की अब हम बात करते हैं। जी हाँ, भारत सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास व कल्याण के लिए कुछ युगांतरकारी योजनाएं शुरू की हैं और इसी के चलते सरकार ने खेल बजट को बढ़ाकर काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, जो खेल और खिलाड़ियों के प्रति बढ़ते प्रोत्साहन को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रमुख कल्याणकारी और खेल प्रोत्साहन योजनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे खेलो इंडिया कार्यक्रम की। जी हाँ, ये योजना ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें तराशने का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है। इसके तहत देश भर से प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को चुना जाता है और उन्हें 5,00,000 रुपए प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता 8 वर्षों तक प्रदान की जाती है। अवसंरचना विकास की अगर हम बात करें तो ग्रामीण और छोटे शहरों में आधुनिक खेल परिसरों और अकादमियों का निर्माण किया जा रहा है। खेलो भारत नीति 2025 की जब बात आती है तो इस नीति के तहत अब पारंपरिक भारतीय खेलों जैसे मलखंभ, कल्लारी, पैटू, थांग ता को भी विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हमारी सांस्कृतिक खेल विरासत जीवंत रहे। इसके साथ साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स की अगर बात करें तो ये योजना देश के शीर्ष एथलीटों को ओलंपिक, पैरालंपिक और एशियाई खेलों जैसे वैश्विक मंचों पर पदक दिलाने के योग्य बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत खिलाड़ियों को

विदेशी कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और अत्याधुनिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। एथलीटों को उनके दैनिक खर्चों के लिए 50,000 रुपये प्रति माह का प्रत्यक्ष जेब भत्ता भी दिया जाता है। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा और साक्षी मलिक जैसे एथलीट इसी योजना के तहत तराशे गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष की अगर हम बात करें तो ये योजना उन खिलाड़ियों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो तंग हाली या कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जी हाँ, गरीब व ज़रूरतमंद उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 5,00,000 रुपए तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके साथ साथ प्रशिक्षण या प्रतियोगिता के दौरान घायल होने पर इलाज के लिए 10,00,000 तक की मदद का प्रावधान भी है। खिलाड़ी की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों को 5,00,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद खिलाड़ियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए ये एक बेहतरीन जीवन भर की पेंशन योजना है। और पात्रता की अगर बात करें तो ओलंपिक, पैरालंपिक, विश्व कप और एशियाई खेलों के पदक विजेता इसके पात्र होते हैं। पेंशन संरचना की जब बात आती है तो ओलंपिक, पैरालंपिक पदक विजेताओं को 20,000 रुपये प्रति माह, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेताओं को 16,000 रुपये प्रति माह और एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 14,000 रुपये प्रति माह तक दिए जाते हैं। साथ ही एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों के रजत कांस्य पदक विजेताओं को 12,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। रीसेट कार्यक्रम की बात करें तो रीसेट यानी रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्संस एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, जी खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य और करियर संक्रमण के लिए ये हाल ही में शुरू की गई एक नई और अनूठी पहल है। और इसका उद्देश्य सक्रिय खेल करियर से संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को खेल प्रशासन, कोचिंग, स्पोर्ट्स गाइडेंस और इवेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए तैयार करना है। इसके तहत उन्हें विशेष शैक्षणिक पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मानसिक कल्याण और मनोवैज्ञानिक सहायता की अगर हम बात करें तो आधुनिक खेल में मानसिक दृढ़ता उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक क्षमता। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में अब उच्च प्रदर्शन करने वाले स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट यानी खेल मनोवैज्ञानिक और मेंटल ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं जो खिलाड़ियों को मानसिक तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करते हैं। इन योजनाओं के सामूहिक प्रभाव के कारण ही पिछले दशक में भारत ने ओलंपिक, पैरालंपिक और थॉमस कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सरकार का दृष्टिकोण अब केवल खिलाड़ी बनाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि खेल के बाद उनके जीवन को सुरक्षित और सम्मानित बनाने पर भी फोकस्ड है।
जी हाँ, क्योंकि भारत ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में शीर्ष देशों में शामिल हो तो हमें खिलाड़ी के पदक जीतने के पुरस्कार पदक जीतने के बाद पुरस्कार देने की संस्कृति से आगे बढ़कर उनके संघर्ष के दिनों में ये मूलभूत सुविधाएं अगर प्रदान की जाएं तो उनका खेल करियर और निखर कर सामने आता है। जी श्रोताओं, तो ये तो थी हमारी आज की लघुवार्ता जिसका विषय था 12 वर्षों में खेल और खिलाड़ियों हेतु भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:15 हुए हैं। जी हाँ, और ये वक्त है आज के पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम का। जी श्रोताओं, आज का पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम पंजाबी गीतों पर आधारित तो है ही, आज जिस विषय पर हम आपके साथ बात करेंगे वो है बरसात का मौसम यानी मॉनसून की मस्ती। लेकिन कुछ सावधानियां भी ज़रूरी होती हैं इस मौसम में ताकि हम स्वस्थ रह सकें और किसी परेशानी के बिना इस मौसम का आनंद ले सकें। आपके इस पर क्या विचार हैं, ज़रूर हमें कॉल कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 2231 और हमीरपुर का एरिया कोड है 01972। और आज के इस कार्यक्रम में जिन गायकों को हमने जोड़ा है आपका मनोरंजन करवाने के लिए वो हैं गीता जैलदार, गैरी संधु, जस्सी गिल, हरजीत हरमन, मलकीत सिंह, दलेर मेहंदी, हंसराज हंस और प्रकाश कौर और सुरिंदर कौर। तो यदि आप भी इन गायकों में से किसी का भी गीत सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। और आइए अब करते हैं पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत।

0: जी हाँ दोस्तों, आज का पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और खिड़की से बाहर ज़रा देखिए, आसमान में बादलों का डेरा है और मिट्टी से उठती वो सौंधी सौंधी खुशबू बता रही है कि मानसून ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इस झुलसती गर्मी के बाद बारिश की ठंडी फुहारें दिल को जो सुकून देती हैं ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन दोस्तों, मानसून की मस्ती और ज़रूरी सावधानियाँ, ये आज के कार्यक्रम का विषय है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जहाँ ये बारिश अपने साथ राहत और हरियाली लाती है, वहीं चुपके से हमारे कान में एक बात और भी कह जाती है, अरे वो सुनने वाले मज़े तो पूरे लो, लेकिन अपनी ज़िंदगी और सेहत का ख्याल भी ज़रा संभल कर रखो। जी हाँ, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए एक श्रोता हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी
1: नमस्कार मैडम जी, मैं पारमपुर से शांति स्वरूप शर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी शांति स्वरूप शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम में। क्या हाल चाल है आपके?
1: बिल्कुल ठीक ठाक है मैडम जी। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी हमीरपुर और उसके कार्यकर्ताओं का बहुत आभार और उन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि वो सिर्फ श्रोताओं की बात ही नहीं सुनते, बहुत जल्दी करते हैं।
0: जी आप थोड़ा सा विस्तार से कहेंगे इस बात को?
1: इस बात को विस्तार से ऐसे कहूँगा कि अभी शुक्रवार को ही मैंने कहा था कि ये लाइव प्रोग्राम बंद हो गया और चालू हो जाए। कितनी जल्दी चालू हो गया। और एक और बात कहना चाहता हूँ।
0: जी जरूर।
1: बहुत पहले मैंने एक फरमाइश की थी कि मुझे हंसराज हंसी का एक गाना अपने पसंद किया था और मुझे बड़ी खुशी है कि 4 जून के जो प्रोग्राम में वो आपने प्रसारित किया, बहुत खुशी हुई।
0: जी जी धन्यवाद। हम कोशिश तो यही करते हैं, हाँ कई बार थोड़ी देर हो जाती है अपने श्रोताओं की पसंद का गीत सुनवाने में, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि सुनवाएं ज़रूर। तो शांति स्वरूप शर्मा जी, आज हम बात कर रहे हैं कि मानसून की मस्ती और ज़रूरी सावधानियां, आपके इस पर क्या विचार हैं?
1: मस्तियाँ तो बहुत है मैडम जी, लेकिन इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। पहले मस्ती की बात करें तो देखिए कितना सुहाना मौसम हो जाता है, एक गर्मी से राहत मिलती है,
0: यानी
1: आदमी जो है वो मतलब बाहर निकलता है, इसमें घूमता फिरता है, क्योंकि गर्मी में निकलना अपने लिए बहुत
0: मुश्किल होता है। जी हाँ।
1: और जहाँ तक सावधानियों की बात है मैडम जी, तो हम लोग अगर खाने पीने में थोड़ी सी भी जो अनगहली कर लेंगे
0: जी,
1: तो बस इसका जो भुगतान बहुत
0: जी
1: बुरा होगा।
0: बिल्कुल आपने सही कहा।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: हमारी काया यानी हमारी शारीरिक सेहत
1: जी
0: है ना,
1: डायरिया वगैरह तो अभी इसका वो जो है वो यही कारण है कि इस मौसम में जो है ना हमारा जो कोई जो बाजार के जो अंतसंत चीजें खा लेते हैं ना, वो बहुत ही हमें खराब करती है इस मौसम में।
0: जी बिल्कुल, इस मौसम में हमारा डाइजेशन यानी पाचन तंत्र थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है और बैक्टीरिया भाई साहब बहुत एक्टिव हो जाते हैं, है ना? जी, और पानी का पहरा जी, ये बहुत जरूरी है, है ना?
1: पानी की बड़ी अच्छी बात कही आपने
0: जी।
1: पानी को मतलब देखिए अब सरकार भी जो अपने पानी की सप्लाई करती कितना किसको करेगी, जब भी रॉ मटेरियल भी आ जाता है उसमें
0: जी हाँ।
1: तो हमें उसका जो है ना सावधानी से बर्ताव करना पड़ेगा, उसे कभी उबाल के पिए, छान कर पिए।
0: बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आप जैसे जागरूक श्रोता हो तो हमें अपनी बात कहने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारी बात जो है वो आपके ज़रिए बाकी श्रोताओं तक पहुंच जाती है।
1: जी धन्यवाद
0: शांति स्वरूप शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए। अब किस गायक का गीत आपको सुनवाएं ये आप हमें बताएं।
1: मेरे पसंद गायक तो आए भी हैं आज, हंसराज हंस जी।
0: जी हंसराज हंस जी आए हैं
1: तो कर दीजिए उनका।
0: जी जरूर। चलिए, आपने हमें कॉल किया, इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, हंसराज हंस जी का ये गीत आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: जी, स्वागत है आज के पंजाबी फ्लेवर लाइफ फोनिंग कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: मैं जी बॉबी बोल रहा हूं जी, अरला से।
0: जी बॉबी जी, क्या हाल चाल है अरला के?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, और आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा, मन खिल उठता हमारा तो।
0: जी, और आपसे बात करके हमारा मन भी खुशी से खिल उठता है।
1: और आज आप मौज मस्ती की बात कर रहे हैं ना मैडम जी।
0: जी जी,
1: वैसे मौज मस्ती तो जरूरी है, हर जगह हरियाली दिखाई देती है तो चलो ठीक है ना, ये तो बात। लेकिन हम सावधानियां नहीं बरतते, कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं ना।
0: जी जी,
1: आजकल हम ज्यादा शौकीन जो हो गए, सेल्फी के ज्यादा शौकीन हो गए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: इसमें भी थोड़ी हमारी जो घटना हो सकती है तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए।
0: बिल्कुल जी, कई बार हम थोड़ा सा ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, रील्स बनाने लगते हैं, नदी किनारे या खड्डों के किनारे चले जाते हैं, और या फिर पानी के बीच या पहाड़ी इलाकों, ऊंची चट्टानों के ऊपर खड़े होकर हम रील्स बनाने लगते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ये हमारे जीवन को खतरे में डाल सकता है। तो साथ ही बॉबी जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि स्ट्रीट फूड आप खाते हैं, जैसे गोलगप्पे, चाट, समोसे?
1: नहीं जी, मैं तो घर का खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ जी।
0: जी हाँ, क्योंकि इस मौसम में गोलगप्पे, चाट और समोसे देखकर वैसे तो जीभ लपलपाने लगती है, लेकिन खुले में बिकने वाले खाने पर मक्खियाँ और इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है।
1: हाँ जी मैडम जी, और एक जरूरी बात है, मैंने आपसे सुनी थी ना वो शनिवार को भी ना।
0: जी,
1: कई बार जैसे मान लीजिए हम बीमार पड़ भी जाते हैं ना, तो हम दवाइयों का सेवन जब भी करते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और दवाइयों का सेवन हमें इस तरीके से करना चाहिए, कई बार आपने बोला कि जैसे बीमार पड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि दोबारा बीमार पड़ गए वही दवाई यूज कर लेनी है।
0: जी हाँ जी,
1: ये गलत बात होती है, क्योंकि डॉक्टर से सलाह लेना बड़ी जरूरी है।
0: बिल्कुल जी, आप बहुत जागरूक हैं, और ये छोटी छोटी बातें जो है ना, कई बार अपने आप कहीं से पढ़ें तो उतना असर नहीं करती, लेकिन किसी से सुनकर, किसी ने कुछ बोला है इस बारे में, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है और समय आने पर क्लिक भी करती है। तो आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आपने कहा
1: एक बड़ी जरूरी बात है मैडम जी ना।
0: जी बिल्कुल,
1: कि इस मौसम में जब भी हम बच्चों को कहीं घूमने ले जाते हैं ना, तो उनका खास तौर पे हमें ध्यान रखना बड़ा जरूरी है।
0: जी हाँ
1: हाँ जी मैडम जी
0: जी, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो बस मस्ती करनी आती है, लेकिन
1: मैडम जी क्योंकि वो कल का भविष्य है ना, उनकी देखभाल करना जरूरी
0: है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपने कहा था कि हम घर का बना खाना खाते हैं, तो थोड़ी सी पत्तेदार सब्जियों से आजकल परहेज करना चाहिए, क्योंकि पालक या पत्ता गोभी या फूल गोभी जो है ना, ये थोड़ी सी कंटेमिनेटेड हो सकती है, इससे भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको खाने से पहले ज़रूरी सावधानियां, जैसे नमक वाले पानी में रखना, सब्ज़ी को अच्छे से धोना और अच्छे से काट कर देखना, तो वो सारी सावधानियां भी बहुत ज़रूरी हैं इस मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए।
1: हाँ जी मैडम जी बिल्कुल।
0: जी बॉबी जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने की, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अब बताइए किस गायक का गीत आपको सुनवाएं?
1: सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर का बताया था नहीं आपने?
0: जी जी जी जी, तो चलिए आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं, और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत

0: जी पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: ना जी, राम राम मैडम जी।
0: जी राम राम जी। अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए। जी और कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: मैं विधि चंद परवाना बोल रहा हूँ जी, गांव हवानी लंगोवान से।
0: जी
1: मैं
0: विधि चंद,
1: कहूंगा कि जो भी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़ के राम राम कबूल करें।
0: जी आपको भी राम राम जी। और बताइए, गर्मी के बाद अब थोड़ा सा बारिश वाला मौसम शुरू हो चुका है, तो बताइए कि मॉनसून की मस्ती के साथ साथ किन जरूरी सावधानियों को अपनाना भी बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है मैडम जी, जैसे अभी बरसात हो रही है तो मतलब जैसे घास है तो घास बड़ा बड़ा घास होने लग पड़ा है, तो जैसे खेत में जाते हैं तो कीड़े कंडू का डर होता है, तो हो सके तो मतलब अपना थोड़ा सा लाठी लेके जाएं साथ में, तो घास को हलाएं तब मतलब आगे कदम रखें।
0: जी बिल्कुल,
1: और
0: बहुत
1: दूसरी बात ऐसी है कि बरसात का मौसम है तो पानी में मतलब ऐसे पानी आता है, तो पानी को अगर हो सके तो उबाल के पीने की कोशिश करें।
0: जी हाँ, बहुत ज़रूरी बात आपने कही है, क्योंकि गांव के माहौल में हमें खेतों में तो जाना ही पड़ता है, और ये हमारा जो है कृषि धन, इसके काम भी हमें करने पड़ते हैं। लेकिन जो ज़रूरी सावधानियां आपने बताई, ये बहुत ज़रूरी है। पूरी बाजू के कपड़े पहने और जूते पहन कर जाएं खेतों में, और डंडा जैसे आपने कहा वो रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और है कि मच्छरों को नो एंट्री कहना भी बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ जी, हाँ जी, बहुत जरूरी है। और बरसात का मौसम अगर हो सके तो कुछ ना कुछ मतलब पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें, जैसे नहीं है तो मतलब खरबूजा है, आम ये है, अमरूद है, आड़ू है, या कुछ ना कुछ मतलब अपने आजकल जो है पौधे लगाने की कोशिश करें, ताकि आपको मतलब फल फ्रूट मिलता रहे और आपके खेत भी ठीक रहे।
0: जी आपने बहुत ही बड़ी बात कही है विधि चंद जी, क्योंकि इस मौसम में कहते हैं ना कि जो भी पौधे लगाए जाते हैं वो अच्छे से लग भी जाते हैं और फ्लॉरिश भी करते हैं, तो अपने साथ साथ प्रकृति का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ जी, हाँ जी, जो अपनी अपनी सेहत का सभी ख्याल रखते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल, उबला हुआ पानी पिए, खाने पीने की बाहर की चीज़ें जो बिल्कुल नहीं खानी, और मच्छरों को भी बिल्कुल अपने घर में नहीं आने देना, क्योंकि बारिश का रुका हुआ पानी जो है ना वो मच्छरों का पसंदीदा घर होता है। तो
1: हाँ जी, हाँ जी, हो सके तो अपने मकान के आगे पीछे मतलब हो सके तो मतलब पानी निकलने के लिए निकासी चाला बोलते हैं उसको, तो मतलब वो निकाल दें,
0: जी
1: और
0: हाँ
1: हो सके तो हफ्ते के बाद जैसे मतलब चूना वगैरह छिड़कते हैं, या
0: जी
1: डीटी वगैरह कोई भी है तो मतलब वो छिड़कते रहें, तो ताकि मच्छर वगैरह ना पैदा हो।
0: जी बिल्कुल। अब विधि चंद परवाना जी, आपने इतनी अच्छी बातें और इतनी ज़रूरी सावधानियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई हैं, हम तक पहुंचाई हैं। अब बताइए कि इस गायक का गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम जी, मेरे को पता नहीं कौन कौन से गायक के गाने हैं।
0: जी गीता जैलदार हैं, गैरी संधू हैं, जस्सी गिल हैं, मलकीत सिंह हैं, दलेर मेहंदी हैं।
1: जस्सू का ही सुना दो, जस्सी सिंधु का।
0: जी जस्सी गिल का। जी विधि चंद परवाना जी, आप हमारे साथ जुड़े इतनी अच्छी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: जी स्वागत है आपका पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम में।
1: मैं रामपाल शर्मा शहरी प्रागपुर से बोल रहा हूँ।
0: जी रामपाल शर्मा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बढ़िया
0: जी। और आप हेरिटेज विलेज से बात कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है आपसे बात करके। और अपने विचार रखिए आज के विषय पर कि मॉनसून की मस्ती के साथ जरूरी सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए।
1: मौसम के साथ सावधानी है तो पहले ये होनी चाहिए ना जी कि आजकल जैसे घास वगैरह ज्यादा हो गया है, जैसे आम लेने जाते हैं हम तो थोड़ा हाथ में कोई अच्छी सी लाठी लेकर चलें ताकि जो कंडू जो है कई याद बैठे होते हैं घास जो है ना आजकल, तो क्योंकि खेतों में तो फसल लगाने से रहे बंदर और बैल गाय छोड़ती नहीं है कुछ भी। जैसे हम आम उम लेने जाते हैं तो उसमें जरा कोशिश करें, और ये गर्मी और बरसात के मौसम में ऐसा होता है ना कि कोई भी थोड़ा सा भी अगर उल्ट पुलट खा लें
0: जी हाँ,
1: थोड़ा सा भी होगा तो ये परेशानी खड़ी कर देता है
0: जी बिल्कुल। और मन की अगर बात करें तो अगर काफी दिन लगातार बारिश होती रहे और सूर्य देव के दर्शन ना हो तो भी मन थोड़ा सा भारी और उदास होने लगता है, तो इसके लिए हमें बाहर अगर अंधेरा फील हो रहा है तो घर के अंदर अच्छी लाइट्स जगानी चाहिए। और संगीत का शौक जो है ना, ये बरसात के दिनों में मन को बहुत अच्छा रखता है।
1: हमारा रेडियो सुबह ही लग पड़ता है जैसे आप फिर करते हैं
0: जी
1: अभी भी चला हुआ है।
0: जी बिल्कुल, आप लोगों के कारण ही तो हम हैं, क्योंकि आप सुनते हैं इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि और अच्छा कार्यक्रम पेश किया जाए।
1: नहीं, और हम आप अगर अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं तो हम खुश होते हैं, इससे भी हमारा सेहत अच्छा रहता है।
0: जी
1: इसके लिए
0: बिल्कुल,
1: आपका धन्यवाद।
0: बिल्कुल आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आप जब इतनी अच्छी बातें करते हैं तो हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि हमें भी खुशी मिलती है। तो आपका डबल धन्यवाद कार्यक्रमों को सुनने के लिए भी और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देने के लिए भी। तो अब बताइए रामपाल शर्मा जी, आपको कौन से गायक का गीत सुनवाएं?
1: गुरदास मान जी का सुना दीजिएगा
0: जी। आज गुरदास मान साहब नहीं हैं, आज हरजीत हरमन है, मलकीत सिंह हैं, दलेर मेहंदी हैं, तो इनमें से किसी गायक का गीत आप
1: दलेर मेहंदी का सुना दीजिए।
0: जी चलिए दलेर मेहंदी साहब का गीत आपको सुनवाते हैं। और आपने हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत की, आप इतनी अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।

जी दोस्तों, कार्यक्रम में बस थोड़ा सा समय बचा है। जाते जाते हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मानसून कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा है, इसे खुलकर जिएं, बारिश की बूंदों को महसूस करें, लेकिन इन छोटी छोटी सावधानियों के छाते को हमेशा अपने साथ रखें। जब सेहत दुरुस्त होगी तभी तो इस सुहाने मौसम का आनंद और भी हसीन होगा। तो दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखिए और आज का पंजाबी फ्लेवर लाइफ फॉर इन कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा को अब दीजिए इजाज़त। रब रखा।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10:45 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हिमाचल की वादियों में।
3: जी हाँ, पहाड़ा दा दोरा चरित्र ते तुहां सारे ही बाकेवन, इना दी सबते बड़ी खूबी और इना दी सबते बड़ी सच्चाई ए ही है भी एक तरफ जिथी इना पहाड़ा दा सौंदर्य जे है अहां दी आत्मा जो सुकून दिंदा, तिथी दूसरी तरफ दी जे अहां गल करिए ता इत्थी दी भूगोलिक परिस्थितियां जड़ियां हैं से जीवन जो कदम कदम पर परखदियां हैं। अहां गलाई सकदे बई उच्चे पहाड़ा च पानी लई कने आना, मवेशियां वास्ते चारा जुटाना, कने खेती करना मैदानी इलाकियां दी तुलना च थोड़ा जिहा दुगुणा शारीरिक श्रम दी मांग करदा, कने इत्थे दा हर निवाला कड़ी मेहनत नाल उगदा। कड़ी मेहनत करना इत्थे दे रहने आलियां कने इत्थे दे बसने आलियां दे नस नस विच परोया हुंदा। थोड़ी जी मुश्किलां तो आउंदियां पर तिना जो भी सह पार करी लैंदे, कने फिर भी खुश रहंदे, कने खुश रखदे भी हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी हाँ, अहां गल करा दे हिमाचल दी खूबसूरती दी, कने इत्थी दे रहने आले लोकां दे सरल सुभाव दी। दिखा जी, कोई भी गल हुंदी या कोई भी मने च परेशानी या दुख हुंदा ना, तो तिस जो सै बड़े ही मासूम कने सरल तरीके ने दूसरे दे सामने रखी दिंदे। तां इत्थी दे लोकां दी, उनां दे जीवन दी कने इस ते जुड़े हो हर पक्ष दी एक यही खूबसूरती मनी जाती कि सै हर परेशानी ते बिल्कुल अच्छी तरह नाल निपटना भी जान दे, कने सरलता ने अपने दिला दी गल भी करना जान दे।

जी, कमला शर्मा और अंदे गायो इस लोकगीता सौगी उन अजका लोकरंग कार्यक्रम एथी संपन्न वादा दिया इजाजत। राम राम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य के 158 सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। कैबिनेट सब कमेटी की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई बैठक में ये सिफारिश की गई। अब इस सिफारिश पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इन स्कूलों में तैनाती के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई चयन परीक्षा में 6,084 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि इन स्कूलों में लगभग 6,200 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। राज्य सरकार द्वारा खोले जा रहे इन सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण अभी तक लगभग 500 विद्यार्थी इन स्कूलों को छोड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता VB जीराम जी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि VB जीराम जी योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार की पारदर्शिता, रोजगार के अधिकार, काम के भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो गए हैं और इसी से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू परेशान है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जबकि VB जीराम जी में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपए की कमी की है। तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की दरों में भी 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। जानकारी के अनुसार अब 19 किलो वाला वाणिज्यिक सिलेंडर 2,930 रुपए में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बीते 4 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। केशव चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और पंचायत चुनाव के नतीजे इसका स्पष्ट प्रमाण है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के उन दावों को भी खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी ने कहा है कि 1 महीने में 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। केशव चौहान ने कहा कि भाजपा को छोड़ कांग्रेस अपनी चिंता करे, क्योंकि राज्य की जनता कांग्रेस के झूठ से तंग आ चुकी है।
1: मेरा कांग्रेस के महासचिव से आग्रह है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करे, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दे। अभी प्रदेश भर में पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय में उनकी हार हुई है, उसको छुपाने का, उसको दबाने के लिए ये इस प्रकार के प्रोपोगंडा कर रही है।
0: शिमला जिले में मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपदा परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की एक टीम को शिमला में तैनात किया है। ये टीम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने की अवधि के लिए शिमला के ढली में तैनात रहेगी। इस टीम में 30 सदस्य शामिल है। शिमला की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा ने कहा है कि जिला प्रशासन मानसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा हुई। इस दौरान मंडी जिला के औट के पास पहाड़ से गिरी एक चट्टान की चपेट में आने से एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून से जुड़ी घटनाओं में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज चंबा जिले के पांगी और लाहौल घाटी में 2 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। उधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जिले

0: ये थी ऋचा शर्मा की आवाज़, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।
1: धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत धगत

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनवा रहे हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की गाई ये गजल।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना। गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

ये थी रंग दरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। रंग

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहली गज़ल जिसे गाया है आशा भोंसले ने।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं अभिजीत का गाया हुआ ये गीत। जी हाँ, कार्यक्रम है सुगम संगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई हुई ये गजल।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अब हम आपके रेडियो सेट्स पर भेज रही हैं। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

जी श्रोताओ, सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही अब आज का सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कुछ हिंदी फिल्मी नगमे लेकर कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं देशभक्ति के इस गीत के साथ, जिसे गाया है उदित नारायण, सोनू निगम और साथियों ने। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अन्नू मलिक ने और फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।

जी सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और बोलों को तरन्नुम में ढाला है आनंद मिलिंद ने। फिल्म है बेटा।

जी सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं दिलवाले फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। नदीम श्रवण ने इस गीत को सुरों से सजाया है और शब्द रचना है समीर की।

जी सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं फिल्म बड़े घर की बेटी का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक, हरिहरन और साथियों ने।

जी सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत। फिल्म है परदेश और ये है आज के सैनिकों के लिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। सैनिक भाइयों, दीजिए इजाजत। जय हिंद। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बजा है, अब से लेकर दो बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियाँ चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लो गर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है। तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नज़र आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफ़र में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नज़र आईं तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज 3रा दिन है और कल 4थे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियाँ हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियाँ देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियाँ देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है, मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नज़र डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं, एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता माँ

देखेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम। लेकिन एक सवाल और है, आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियाँ छिपी हुई हैं। आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है। उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपेरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी, और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थीं, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से, और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की।

खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है, तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं। पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं, आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है, तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है, बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है। और बारिश जल्द ही आ जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। 100 साल पहले तो नहीं, 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग, प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा दिनों भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना। हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है। धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे?

जब आप मिला, वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं, और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की इनायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफ़र शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफ़र में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा, जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है, जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी 7 वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है, उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है, उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा?

इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी, सुमन जी, शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए। फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं

0: जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहाँ हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी, कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर होता है? और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: मैंने

सलिल चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए, हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है, और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम। जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज़्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफ़ी साहब की गीत के इस आवाज़ को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को 1 घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, ज़रूर वहाँ बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहाँ तक पहुँचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, ज़रा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहाँ मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नज़ारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता, आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है, मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियाँ होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा ख़राब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाएँ, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें ज़रूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज़। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है, जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं, शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

0: पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना, और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ। बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं। सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज़ दिल को अजीब सुकून दे रही थी। ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं। हाँ, ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए। खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है। ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नज़ारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नज़ारा, हम कभी नहीं भूल सकते वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतज़ार है, लेकिन कुदरत भी और इंतज़ार करा रही है। इंतज़ार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि ज़िंदगी के सुरीले सफ़र का एक जीवंत दस्तावेज़ है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है, ज़िंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियाँ प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही हैं, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही हैं, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह। धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत, और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: रात हो गई लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया, निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम भी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। ये हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज़्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए तेज की सुरीली धड़।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for comprehensive convention on international terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Shri Amarnath Ji Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enters round of 16 in extra time victory over Senegal. India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसिशन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
1: The Prime Minister also informed that in the field of defence today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
2: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी
1: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 marks a major step towards ensuring employment, strengthening rural livelihoods, and accelerating the development of villages across the country. Union Minister for Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, has said. Union Minister Sri Shivraj Singh Chauhan, along with Andhra Pradesh Chief Minister, N. Chandrababu Naidu today launched the VBG Ramji Act at Mukhavaripalle village in Tirupati district of Andhra Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Chauhan said the scheme aims to ensure that no poor labourer remains without work and that every hand gets employment. He thanked Prime Minister Narendra Modi for introducing the scheme and said employment under the programme has been enhanced from 100 days to 125 days.
3: Under Manrega, workers used to get employment for only 100 days. But under the Viksit Bharat Ji Ramji Yojana, laborers will receive employment for a full 125 days. In the very first year, the center's contribution to the scheme amounts to 95,600 crore rupees, with the states contributing their 40% share. A total of 1,51,282 crore rupees will be spent in just 1 year. 282 crore rupees.
1: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today underlined that the government is promoting ease of living while ensuring environmental protection through policies that balance development with sustainability. Addressing a national conference on electric mobility, Mr. Yadav said the government's approach reflects Prime Minister Narendra Modi's vision of ensuring that ecology and economy grow together. He highlighted that despite rapid industrial development, the country's forest cover has increased from 7,1673 square kilometres in 2014 to 7,15,000 square kilometres. The Election Commission today announced the schedule for by-elections to three Legislative Assembly constituencies across Bankipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The polling will take place on the 30th of this month and the counting of votes will be conducted on the 3rd of next month. The National Rain-Fed Area Authority-funded Wild Rice Conservation Project has achieved a major milestone in Assam. The Borjuli site in Sonitpur district

0: दसी, निवेदिता, एआईआर न्यूज़, मुंबई।
1: A powerful storm swept across Romania's capital Bucharest and 20 counties yesterday, leaving one person dead and causing widespread damage. Emergency services said nearly 2,000 calls for assistance were received in Bucharest alone, where several metro stations were flooded. The storm also affected around 60 towns and villages outside the capital, damaging dozens of homes and vehicles. In Ukraine, 13 people were killed and dozens of others injured after Russian drones and missiles hit residential buildings in Kiev as part of a broader wave of Russian overnight attacks. In the FIFA World Cup, Belgium staged a stunning comeback to beat Senegal 3-2 after extra time in the round of 32 and qualify for the round of 16. Co-hosts US registered their first win in the knockout round after 2002. This morning, they defeated Bosnia-Herzegovina 2-0 in the round of 32 to advance into the round of 16, where they will take on Belgium. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 402 points at 77,325, while the Nifty advanced 129 points to 24,135 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. Both countries signed several agreements, including in economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Modi says India-Japan bilateral relationship has stood the test of time. India's proposal for Comprehensive Convention on International Terrorism gains renewed support at UN General Assembly. Sri Amarnath Yatra begins with first batch of pilgrims leaving Bhagwati Nagar base camp in Jammu. Southwest monsoon covers entire Delhi, advances further across parts of northern and western states. In the FIFA World Cup, United States registers first knockout stage win since 2002, defeating Bosnia-Herzegovina 2-0. Belgium also enter round of 16 in extra time victory over Senegal. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
3: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
3: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
2: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकायची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
4: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
2: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावली पल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
5: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 151,282 करोड़ रुपया।
2: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
6: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
0: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

0: गया।
1: असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है सलिल चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला, डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति नीति भी मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में सूची लगभग 90% तैयार हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सीबीएसई अध्यापकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने पर सहमति बनी है और अब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय का कार्य शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा।
3: मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो, उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, उसके आधार पर ये सारी बातें हो तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी इसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहां तक हमारे शिक्षा की बात आती है, हमारा स्टैंड इसको लेकर क्लियर है कि मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियां शीघ्र हो।
1: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए इस वर्ष 95,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य सरकारें भी अपना हिस्सा देंगी जिससे कुल व्यय 1,51,282 करोड़ रुपए हो जाएगा।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आज जिला सोलन विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक सोलन में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी योजनाओं का कार्य गुणवत्तापूर्ण व समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। सुरेश कश्यप ने सोलन जिला में केंद्रीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर संतोष जताया और सभी खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आज से वीबीजी रामजी योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत हिमाचल में कार्य किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
0: ये थे प्रादेशिक समाचार। आइए अब सुने मंडी जिला की चिट्ठी। लेखक हैं मुनीश सूद और वाचिका हैं राजकुमारी चंदेल।
5: मंडी जिला के जोगिंद्रनगर स्थित ओहल चरण 3 जल विद्युत परियोजना अब पूरी क्षमता से संचालित हो रही है और हिमाचल प्रदेश के लिए आय का बड़ा स्रोत बन गई है। परियोजना से प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। अब तक परियोजना से लगभग 465 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो चुका है। इसका वार्षिक लक्ष्य 390 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का है। राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप से परियोजना की वित्तीय और प्रशासनिक बाधाएं दूर हुई तथा 185 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से बहाली और मरम्मत कार्य पूरे किए गए। परियोजना की आय का 13% हिस्सा राज्य सरकार को मिलेगा, जिससे हर वर्ष 25 से 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। परियोजना प्रबंधन के अनुसार अब उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और इससे प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी। परियोजना के प्रबंध निदेशक देवेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष शानन जल विद्युत परियोजना के लगभग 1 माह बंद रहने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ था, लेकिन अब उत्पादन सामान्य गति से बढ़ रहा है। ऊहल चरण 3 परियोजना को प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता राजस्व वृद्धि और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। बीते दिनों नगर निगम मंडी को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया है। लगातार 5वीं बार पार्षद चुनी गई सुमन ठाकुर को मेयर जबकि जितेंद्र शर्मा को डिप्टी मेयर निर्वाचित किया गया। मेयर बनने के बाद सुमन ठाकुर ने पार्टी नेतृत्व और नगर निगम क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की प्राथमिकता ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहर के समग्र विकास, मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण व जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर जितेंद्र शर्मा ने कहा कि नगर निगम के

0: 2023-24 से 2025-26 के दौरान जिले में 6,593 किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए, जबकि 27,041 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ। इसी अवधि में किसानों को 84,509 किस्म के शहतूत पौधे भी वितरित किए गए। सिल्क समग्र 2 योजना के तहत वर्ष 2025-26 में जिले के 105 रेशम उत्पादकों को 1,63,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिले के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक टसर रेशम पालन भी ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन रहा है। रेशम गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए मंडी जिले में रेशम मंडल मंडी, बालीचौकी, संधोल और थुनाग स्थित सिल्क वर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर सहित कई संस्थान सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से किसानों को रेशम बीज, पौधरोपण, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे जिले में रेशम उद्योग को संगठित रूप से बढ़ावा मिल रहा है। गत दिनों जंजहली में जिला उद्योग केंद्र मंडी के सौजन्य से स्थानीय उद्यमियों के लिए जैम पोर्टल रैंप योजना, उद्यमिता प्रशिक्षण और इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 60 उद्यमियों ने भाग लिया। इस दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। गत दिनों जोनल अस्पताल मंडी की रोगी कल्याण समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक में अस्पताल की OPD पर्ची का शुल्क 10 रुपए निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बढ़ती मरीज संख्या, रखरखाव और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कदम समय की जरूरत बन गया था। इसी के साथ मंडी जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मंडी जिला की चिट्ठी, लेखक थे मुनेश सूद।

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। और नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहाँ हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
1: रुचि
0: जाती।
1: उत्पन्न होती
0: जी,
1: जी।
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिज़ाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे।

0: उन्होंने ओस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की काथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जा करके वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
1: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन काथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
0: जी
1: सम्मानित कर दिया गया
0: उन्हें।
1: जी,
0: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं, और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा, और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज़ हुए, तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे, उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाज़त भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिज़ाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
0: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है, बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम हैं बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है, बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे,
1: तो एक गाना सुनते हैं।
0: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: ना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे
0: हमारा
1: हंसी मजाक
0: चेहरा
1: में
0: वैसा
1: बोलते
0: ही
1: हैं
0: हो जाए।
1: वैसा ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
0: हाँ,
1: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
0: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो
1: हाँ
0: ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
0: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
0: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं

0: स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं, तो जो
1: हाँ
0: फोटोज,
1: बिल्कुल,
0: ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत
0: और
1: सारी
0: कुछ
1: जी,
0: तस्वीरें तो ऐसी होती हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी। आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
0: जी
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
0: और फिर
1: जाता है, और
0: उस
1: फिर वो
0: वक्त,
1: बातें पता नहीं कहाँ
0: हाँ,
1: तक चली जाती
0: और उस
1: हैं।
0: वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं, है
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: ना, कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी
1: बिल्कुल।
0: सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताज़ा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी ऐसा जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज़ पर छपी तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
0: एक साथी लिख कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने अपने बेटे के पुराने एल्बम निकाल कर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहाँ जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी, वहाँ भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताज़ा हो जाती हैं।
0: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
1: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे,
0: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है। यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है।
1: एहसास तो वही करा रहा
0: और
1: है
0: वो जो है ना
1: ना।
0: सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है। बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताज़ा हो जाते हैं। और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जो अब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहाँ पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना
1: ये
0: मासूमियत भरा सवाल
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: है।
1: और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़
0: जी
1: पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है वो इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है,
0: जी
1: इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो
1: बिल्कुल।
0: हमारा अच्छा ही चाहेंगे। और सब कुछ सोच के, घर परिवार देख के, पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के, पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था,
1: जी
0: और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी
1: बिल्कुल।
0: भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए, और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: मदद मिले,
1: बिल्कुल,
0: सहयोग मिले।
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ
1: एक्सपेक्टेशन,
0: बटाए,
1: हाँ
0: यानी
1: ये
0: पुराने
1: वाली
0: जमाने में ऐसा
1: अपेक्षा
0: होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं,
0: सिर्फ
1: ऐसा
0: लड़कियां
1: नहीं
0: ही
1: होता
0: काम
1: था।
0: करते थे।
1: हाँ, लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र हैं, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना
0: जी
1: चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर हैं, तो किस तरह से अपने सब चीज़ों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी। उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए लें। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी, आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं, माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है, जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए ज़रूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करवे?
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहाँ चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति, और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रख कर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी
0: बिल्कुल
1: इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी। अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती हैं कि मेरी एक सखी हैं, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर हैं और अब जहाँ वो ससुराल में गई हैं तो वहाँ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करें। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज़्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं हैं, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी ज़िंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी
0: बिल्कुल
1: करना बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला होती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल। और आज के ज़माने में जहाँ इतनी तेज़ भागती दौड़ती ज़िंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
1: बहुत
0: अत्यंत
1: ज़रूरी है।
0: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियाँ, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से ही, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
1: ले
0: ले
1: सकती है,
0: सकती है,
1: अपनी
0: पा
1: इच्छा पूरी
0: सकती है,
1: कर
0: अपनी
1: सकती है।
0: इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी
1: हाँ
0: कर
1: पूरी
0: लेती
1: कर
0: है,
1: सकती है।
0: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
1: पूरे
0: परिवार
1: परिवार
0: को
1: का।
0: होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए, तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
0: बिल्कुल
1: भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल,
1: और अब गाना सुन ले, एक
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना।
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है। अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार
1: अक्सर ऐसा
0: ऐसा
1: होता तो
0: है ना।
1: है ना।
0: पर
1: और ये
0: नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई कि या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में सोचते
0: सोच
1: हैं,
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल
1: है
0: दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया। इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे, या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है। कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप
1: बिल्कुल।
0: हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
1: ऐसा अक्सर हो ही
0: होता
1: जाता
0: है
1: है
0: ना।
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको
1: बिल्कुल
0: सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: जब
1: बहुत जरूरी है
0: हम
1: क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है, तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़ी, आप तो घोड़े बेच कर सोए थे, कोई उठा कर ले जाता, आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके

0: लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत ज़रूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं। वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफ़ी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत ज़रूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय। रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी, सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर ज़रूर
1: रहना
0: होना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: एक साथ ही लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो। कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले न, सोने से
0: बिल्कुल
1: पहले
0: बिल्कुल।
1: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है।
0: बिल्कुल। और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो, और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
1: आराम दे।
0: सपोर्ट दे और आराम दे।
1: और अब गाना सुन ले।
0: चलिए

0: हमारी एक सखी ये कहती हैं कि एक और ज़रूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही हैं कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। चार बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: संदेश टू सोल्जर्स।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 देश नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका

0: हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
1: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर, मैं ठीक बता रहा हूँ?
0: जी बिल्कुल ठीक, बहुत बता
1: जी।
0: रहे हैं।
1: तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
0: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलुट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
1: जी
0: मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी
0: इसमें। जी जी जी
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने DIG महोदय, IG महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
1: जी। तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना ख़तरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं, अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
1: अच्छा।
0: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं, कार्मिक है, वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के STF भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर जी। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बाला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक

0: बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई वहां पर, आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
1: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता
0: बिल्कुल.
1: है उसमें।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
1: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपर सर डिप्टी कमांडेंट थे,
0: जी
1: उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
0: जी
1: एक जी जी जी
0: तो
1: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे दोनों साइड से, काउंटर फायर बहुत ज़बरदस्त
0: जी
1: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी
0: सर, हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स, कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
1: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है
0: जी
1: उनको कितने से
0: खात्मा
1: जल्दी
0: करें.
1: खात्मा करें।
0: जी
1: जी
0: लेकिन सर
1: जी
0: मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
0: जी
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों को
0: जी
1: बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे,
0: क्या
1: डर
0: बात है
1: नाम
0: सर.
1: का इसमें कोई चीज़ ही नहीं था।
0: जी
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते हैं ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं. तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको 2 बार दिया गया है, उसके बारे में बताइए.
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला,
0: जी
1: गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 नक्सली मारे गए थे, उसमें
0: अच्छा
1: भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
0: जी,
1: जी
0: और
1: जी
0: 2 बार आपको मिला ये,
1: दो बार गैलेंट्री
0: और
1: मिला।
0: उसके
1: जी
0: अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं 2-4 देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज़्यादा हैं.
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन
0: जी
1: काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली.
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा. तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको 2 बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ. हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से. आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा।
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें बहुत
0: अच्छा।
1: सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था, ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और
0: जी,
1: हाँ सब मिलकर,
0: एसएसबी की टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के।
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता कि वो कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया, तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा चलना स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी,
1: फिर
0: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
0: अच्छा।
1: में ज्वाइन किया जी।
0: जी तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया, उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
0: अच्छा।
1: भी एनडीएफबी के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, वहाँ फिर एनडीएफबी के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
0: तो सर आपकी जो जी, एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
1: हाँ
0: जी।
1: इंडो भूटान
0: तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
1: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय असम जल रही थी एनडीएबी का उससे,
0: अच्छा,
1: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे, हमारे बटालियन एसएससी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें, उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था, बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
0: अच्छा, हाँ, तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी
1: जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
1: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
0: जी,
1: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है 4 साल का 5 साल का, ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
0: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की,
1: सलोनाबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
0: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग,
1: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
0: तो 23 बटालियन, हाँ, असम में आपने शुरुआत, अच्छा,
1: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत,
0: अच्छा,
1: हुआ जी।
0: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
1: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई गांव में हुआ जी जी।
0: अच्छा, फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
1: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था,
0: अच्छा,
1: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई,
0: अच्छा,
1: असम में आ गई होली में जी।
0: ओके, तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
1: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युकसुंग में मेरी पोस्टिंग हुई है।
0: अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है,
1: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
0: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
1: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी
0: जी
1: जी। हाँ, लेकिन
0: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
1: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज़ को हम याद,
0: अच्छा,
1: करते हैं जी।
0: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
1: जी
0: जी, तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं
1: जी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज़ से हर बड़े चीज़ में
0: जी
1: जी जी जी।
0: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
1: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला, आज भी के मेरा जो मानना है आज के समय में, कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है,
0: यानी कि जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
1: हाँ,
0: इन्फॉर्मेशन
1: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है
0: जी जी,
1: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
0: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
1: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
0: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
1: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
0: अप्लाई कर सकते हैं,
1: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
0: जी,
1: तो
0: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
1: हाँ, ग्रेजुएशन
0: क्राइटेरिया जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ओवर बिलवड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली. सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ. शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से. जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम. आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर. यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है. तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए.
1: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं. अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए.
0: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं. एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार हैं ये जैतपुर नई दिल्ली से. जय हिंद कह रहे हैं आपको.
1: जय हिंद आपको भी.
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से. प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी. ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये.
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें. सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को. आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है.
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें.
1: फोर्स से ही मैंने की. जी जी
0: जी. आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कभी कोर्स किया है सर? ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए.
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये. जी
0: अच्छा.
1: इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज़्यादा हार्श और ज़्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
0: अच्छा
1: खाना है. और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है,
0: ओके,
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है.
0: अच्छा,
1: चलने से लेके हर चीज. और
0: अच्छा.
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल
0: अच्छा.
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: से कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है. जी
0: पूरा टैक्टिक्स. तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर.
1: जी जी.
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके.
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें. जी जी जी. जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है.
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है.
0: अच्छा.
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है.
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे.
1: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम.
0: अच्छा.
1: हाँ.
0: तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है.
0: 1 महीना?
1: जी जी जी जी.
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ, लगे रहना है साथ में, हो जाता है सारा चीज. मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है.
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है.
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं.
0: अच्छा. यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा
1: जी,
0: भरे
1: जी,
0: रखते हैं.
1: हाँ.
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
1: जी जी जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा,
1: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो
1: हाँ
0: कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है,
0: अच्छा,
1: अचानक अचानक सब चीज़ होता है। आप
0: पहले से नहीं बताते हैं?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं, आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके, एक तरह से ड्रिल ड्रिल
1: ड्रिल ड्रिल हाँ,
0: अच्छा,
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है। जी
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी
1: अगर
0: जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है, ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस
0: जी
1: अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाए पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक
1: हाँ,
0: भी कोई अगर कमजोर पड़ा तो
1: कमजोर
0: पूरी
1: पड़,
0: टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी,
1: हाँ, तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है ट्रेनिंग
0: मोटिवेटेड
1: का।
0: रखने।
1: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंड, फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा, टीम के रूप
0: जी
1: में ही उनको ढाला जाता
0: सर,
1: है।
0: अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाय चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं
0: जी
1: भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
0: जी
1: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
0: जी
1: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
0: जी
1: जी
0: आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
1: जी जी जी जी
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डरों को
0: अच्छा
1: पकड़ना है, जी उसके उसके
0: अच्छा
1: उसके बारे में।
0: यानी कि
1: हाँ
0: वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीज़ें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है।
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना,
0: जी
1: उसके
0: जी
1: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: जी
0: सर, ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है, या आपको मज़ा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
1: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
0: जी
1: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो
0: तो
1: मज़ा आएगा।
0: आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया, मतलब?
1: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही
0: अच्छा
1: किए।
0: सर,
1: जी
0: यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूँ,
1: जी
0: राजवीर का यहाँ पर मैसेज आया है, और ये
1: जी
0: बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूँ, प्लीज़ राज सर को मेरा जय हिंद, और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
1: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक

0: मेडल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए, जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है।
0: जी
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी।
1: ये
0: सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा,
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है
0: जो
1: उनका,
0: सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें
1: हाँ
0: सर्विस
1: जो
0: के लिए।
1: अच्छे काम करते हैं उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा। और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है। और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका
0: जी
1: ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए। हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी
1: टीम के साथ मिलके, हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो
0: जी
1: नाम हमेशा रोशन रहे।
0: रोशन रहे, क्या
1: जी
0: बात है
1: जी
0: सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत
0: जी
1: आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीश पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर, ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के ज़रिए वो भी उन तक पहुँचाएँ अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर, हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद, झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा, आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहें रेनबो दिल से दिल तक।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया रेल की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्ज्वल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
3: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत

0: खंडवा नगर निगम ने पॉलिथीन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, उनका प्रसारण समय।

शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बाद आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा युवा मंच 5:30 पर। 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम होगा 6:05 पर। किसानों और बागवान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी 6:30 पर। हिंदी समाचार होंगे 7 बजे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सात बजकर 5 मिनट पर आज सुनेंगे आप ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मैच होगा, ये साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच, इसका आंखों देखा हाल आप सुनेंगे। इस दौरान आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8 बजे पुणे आप ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। समाचार संध्या का अंक 8:45 पर होगा। रात्रि 9 बजे News@9 और पुणे आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। ये मैच साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चांदनी रातें। 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार लेके जाएंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

0: ਪਾੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੰਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹਮੀਰਪੁਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਮਾਠਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਂ ਇਹ ਬੇਟ ਸੋਹਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਣਾ।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद आवाज़ सुनने पंजन का कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: संजीव दीक्षित कन्नै साथियें दी आवाज़ तुसें बाबे दी भेंट सुनी तां इक अंतराल लैंदे हन, उसके बाद तुहानू जो अगला कार्यक्रम दा भजन सुनाना है।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो आओ सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

इसी भजन सौगी दा इत्थों ही कार्यक्रम संपन्न होंदा। अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी बोली में कार्यक्रम भजन संध्या। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यू मंच।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: यो दोस्तों, आपको संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और हम आपसे यही कहना चाहेंगे सबसे पहले कि ऊंचाइयों को छूने की चाह हम जरूर रखें, पर अपनी जड़ों को और सादगी को हम कभी ना भूलें। ऋतुओं की तरह हर अंत में एक नई शुरुआत को देखना हम सीखें और संग्रह के बजाय जीवन को एक सुंदर लय में जिएं। सच्चा प्रेम अधिकार जताने में नहीं, बल्कि सूर्य की तरह जो है दूसरों को खिलने का अवसर देने में है। जब भी भीतर का शोर हमें थकाए तो हम प्रकृति में जाएं, संगीत सुनें और अच्छी किताबें भी पढ़ें। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस। तो चलिए इस पर बात करते हैं। प्रतिवर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य खेल पत्रकारिता में उस क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना तथा खेल पत्रकारों के सामने आने वाली जो चुनौती हैं उन पर ध्यान आकर्षित करना। खेल पत्रकारिता खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आप भी अपना करियर इससे जोड़ सकते हैं। जिन्हें भी खेलों का शौक होता है वो खेल पत्रकारिता से जुड़ सकते हैं। या न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है बल्कि खेल और खिलाड़ियों के बीच एक सेतु का काम भी करती है। आपको बता दें दोस्तों, खेल पत्रकारिता का महत्व केवल खेलों की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। या खेलों की जानकारी, विशेषण और कहानियां प्रस्तुत करते हैं जो दर्शकों को खेल के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें प्रेरित भी करते हैं। तो चलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस दिवस पर हम संकल्प ले सकते हैं कि हम भी, अगर हम खेलों में शौक रखते हैं, खेलों में हमारी रुचि है, तो हम एक अच्छे खेल पत्रकार बन सकते हैं जिसे हम प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय, अंतर्राष्ट्र स्तरीय जो इवेंट हैं उनको हम उनकी कवरेज कर सकते हैं और इसमें हमारा जो करियर है वो संवर सकता है। जैसा कि हमने कहा कि इसकी शुरुआत जो थी वर्ष 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही था कि खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और खेल पत्रकारों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उन पर ध्यान आकर्षित करना। तो जैसा कि हमने इसके जो स्कोप हैं उसके बारे में चर्चा की, जो खेल पत्रकारिता है खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या न केवल खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है बल्कि खेल और खिलाड़ियों के बीच एक सेतु का भी काम करती है। और खेल पत्रकारिता का महत्व खेलों की रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं बल्कि हमें यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। या खेलों की जानकारी, विश्लेषण, कहानियां प्रस्तुत करने में सहायक है जो दर्शकों को खेल के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है और उन्हें प्रेरणा भी मिलती है। तो चलिए इस बातचीत के बाद आपको ले चलते हैं फिर से संगीत की ओर।

0: नीलम छुटकी राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: यो दोस्तों, इस अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिमला समझौता 1972 में हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। भारत और इसके पड़ोसी भारत के हितों पर देशों की नीतियों और रणनीति का प्रभाव रहता है। शिमला समझौता 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, कश्मीर समस्या, नियंत्रण रेखा, LOC, परमाणु परीक्षण जैसी बातों के लिए तय हुआ था। हाल ही में 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौते की वर्षगांठ भी मनाई गई थी। आइए बात करते हैं ये समझौता क्या है, वर्ष 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति। यह समझौता वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का प्रत्यक्ष प्रमाण था, जिसका परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। इस संघर्ष में भारत के सैन्य हस्तक्षेप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मुख्य वार्ताकार भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो इस समझौते का उद्देश्य शत्रुता के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और साथ ही आगामी संबंधों को समन्वय बनाना था। इसका उद्देश्य भारत के शिमला में कई प्रमुख उद्देश्य थे। कश्मीर समस्या का समाधान, भारत ने द्विपक्षीय समाधान की दिशा में कार्य करके पाकिस्तान को कश्मीर विवाद को वैश्विक स्तर का होने से रोका। संबंधों का सामान्यीकरण भी किया गया। नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की आशा भी व्यक्त की गई। भारत ने पाकिस्तान में और अधिक असंतोष तथा संभावित प्रतिरोध को रोकने के लिए युद्ध विराम रेखा को स्थायी सीमा में बदलने पर जोर नहीं दिया। संघर्ष समाधान और द्विपक्षीयता पर बात करते हैं तो इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से मुख्य रूप से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य संघर्ष एवं टकराव को समाप्त करना था। सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक कश्मीर में नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल थी, जिसे वर्ष 1971 के युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। दोनों पक्ष अपने दावों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इस रेखा को समान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इस पर बात हुई। और बिना दोनों पक्षों की सहमति के बिना इसकी स्थिति में परिवर्तन न करने पर सहमति जताई। इसमें सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने अपने पक्षों में वापस जाने का प्रावधान किया गया, जो तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो दोनों देशों के तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आ रहा था। इस समझौते में दोनों सरकारों के प्रमुखों के बीच आगामी बैठकों तथा स्थायी शांति स्थापित करने, संबंधों को सामान्य बनाने तथा युद्धबंदियों के प्रत्यावर्तन जैसे मानवीय मुद्दों को भी संबोधित करने के लिए जारी वार्ताओं के प्रावधान की भी उनका निर्धारण किया गया। जैसा कि कश्मीर का मुद्दा और भारत पाक का व्यापक संबंध दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने हुए हैं, इसलिए इस समझौते की वर्तमान में भी प्रासंगिकता बनी हुई है। अपनी सीमाओं और विभिन्न व्याख्याओं के बावजूद दोनों देशों के बीच की भविष्य रेखाओं और वार्ताओं के लिए एक यह कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो चलिए इसके बाद आपको पुनः लिए चलते हैं आप संगीत की ओर, लेकिन लेते हैं एक अंतराल।
3: ज्वेलर्स कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक यहां हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
9: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
9: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
9: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
9: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: और अदल के बाद आइए सुनते हैं गीत।

इस संगीत के बाद आइए बात करते हैं, यो दोस्तों, अपने करियर के प्रति हमें जागरूक कैसे बनना है, सक्रिय रहना है, दीर्घकालिक सफलता की जो प्लानिंग है वो हमारी कुंजी होती है। करियर में सही दिशा चुनने और आगे बढ़ने के लिए हमें स्वयं मूल्यांकन पर ध्यान देना होगा, अपनी रुचियों, मजबूतियों और कमजोरियों को पहचानने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अपनी योग्यताओं के आधार पर हम हमेशा संभावनाओं का पता लगाने में आगे बढ़ते चले जाएं। लक्ष्य निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में विभाजित करना ज़रूरी है। लगातार सीखना बहुत अच्छी आदत है। कार्यस्थल की बदलती मांगों के अनुसार हमें नए कौशल सीखने होंगे ताकि हम समय के अनुसार अपने आप को ढाल सकें, उस प्रतिभा को हम प्रदर्शित कर सकें। नेटवर्किंग, अपने क्षेत्र के पेशेवरों से हम जुड़ें और करियर से सलाह लेकर और उन गाइडलाइंस का पालन करें जो हमें आगे ले जाती हैं। अपने करियर को लेकर कोई विशिष्ट निर्णय लेना हमें ज़रूरी बनता है तो मार्गदर्शन हम चाहते हैं तो हमें क्या करना है, वर्तमान कार्यक्षेत्र या शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, क्या आप करियर में बदलाव करने की सोच रहे हैं या अपनी नौकरी तलाश कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक समसामयिक विषयों को चुनें और गाइडलाइंस, इनके मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त करते रहें और सतत आगे बढ़ते रहें। तो इसी के साथ अब आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। संजय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यो मंच, ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। हम आपको याद दिला दें 7:05 पर सायं आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। यह मैच साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है।

इससे पहले 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने।

7:45 पर आप सुनते हैं आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के बाद 8 बजे आप पुनः सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। यह मैच साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है।

अपने धार्मिक स्थल तक हम पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ, लेकिन हम किसी का दिल ना दुखाएं, यही सबसे बड़ी ईश्वर की भक्ति है।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाश

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप ओमान पहुंची है। वहां के लोगों ने हिमाचल के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता व स्वाद की सराहना की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोलेगी। उन्होंने बागवानों से गुणवत्ता, ग्रेडिंग और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि हिमाचल वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले फलों के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके। लाहौल स्पीति जिले के प्रसिद्ध छरमा यानी सीबक थॉर्न को जीआई टैग मिला है, जिससे अब इस औषधीय पौधे से बने उत्पादों को देश विदेश में अलग पहचान मिलेगी। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग का आभार व्यक्त किया है। सीबक थॉर्न को जीआई टैग मिलने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: स्पीति घाटी के प्रसिद्ध छरमा यानी सिबक थॉर्न को जीआई टैग मिल गया है। सिबक थॉर्न एक औषधीय गुणों से भरपूर फल है, जिसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे जूस, जैम, हर्बल उत्पाद और कॉस्मेटिक सामग्रियां तैयार की जाती है। जीआई टैग मिलने से अब स्पीति छरमा और इससे बने उत्पादों को देश विदेश में अलग पहचान मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले लाहौल के पारंपरिक दस्ताने और जुराबों को भी जीआई टैग मिल चुका है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करवा रही है। किन्नौर जिला के निचार उपमंडल के भावानगर में आज जनसमस्याएं सुनने और लोगों से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के समान विकास के लिए कार्य कर रही है। बाद में उन्होंने निचार ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित कार्यशाला को भी संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस ने आज से राज्य में संगठन विस्तार अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान अगले एक महीने में 8 से 10 हजार लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन आज शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रामपुर से 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे ब्रिजलाल ने 250 से अधिक सदस्यों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
2: संगठन विस्तार कार्यक्रम इसकी आज हमने शुरुआत की है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य जी हमारे साथ है और रामपुर से हमने इसका शुरुआत किया है और आज ब्रिजलाल जी रामपुर से संबंध रखते हैं और ये अपने कम से कम 250 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ है और सभी लोगों ने यहाँ पार्टी को ज्वाइन किया। इसी प्रकार के प्रोग्राम जो है हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे और पूरे प्रदेश में लगभग हम 8 से 10 हजार लोगों को जोड़ेंगे।
0: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने का दावा पूरी तरह झूठा और जनता को गुमराह करने वाला प्रयास है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जन विरोधी नीतियों और विफलताओं से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का राजनीतिक नाटक कर रही है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा। सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में आज एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कालाअंब पुलिस थाना के एसएचओ बलवंत सिंह ने बताया कि पुलिस व दमकल विभाग की टीमें मौके पर आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात के

0: लगाकर आसपास के सभी उद्योगों को तुरंत खाली करवाकर काम बंद करवा दिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल में पहाड़ी से पत्थर गिरने की दर्दनाक घटना में एचआरटीसी के परिचालक ज्ञान सिंह की मौत हो गई। ज्ञान सिंह मंडी जिला की जोगिंद्रनगर तहसील के लड़भिलोड़ गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार बस अपने निर्धारित रूट पर थी और आज सुबह म्याड़ नाला के पास बस रुकने पर ज्ञान सिंह ब्रश करने के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनके सिर पर आ गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने सुनने वाले तमाम श्रोताओं को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहती हवाओं के साथ जब दिल के तराने गूंजने लगते हैं तो हवाओं में भी वही रुख हो जाता है, जैसे मन मानो दिल की बात इन हवाओं में गूंज रही हो।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद आपका कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने में फिर से स्वागत है। चलिए हम गीतों के साथ आपके साथ बातचीत भी करते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए अक्सर हम कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है खुद को स्वीकार करना। जो हम नहीं हैं वो होने का हम प्रयास कई बार झूठा करते हैं, वो हमारे लिए बड़ा घातक साबित होता है। छोटी छोटी चीज़ों में हम आनंद खोजें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: सफर सुहाने गाने नए पुराने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अंतराल के बाद हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन इससे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर हम किसी का निस्वार्थ भाव से उसका सम्मान करते हैं, मदद करते हैं, तो हमें संतुष्टि तो मिलती है और दूसरे को भी बहुत खुशी मिलती है। ऐसे प्रयास हम करते रहेंगे तो समाज में सतत एक प्रेम धारा बहती चलती चली जाएगी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का एक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि गीतों के साथ साथ हम आपसे कुछ बातें भी साझा करते रहते हैं जो जीवन उपयोगी होती हैं। हम अपने शौक पूरे ज़रूर करें, लेकिन अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय उन गतिविधियों को भी ज़रूर निकालें जिन्हें करने में हमें खुशी मिलती है, जैसे पेंटिंग है, संगीत है, बागबानी है, किसी की सहायता करनी है, किसी को दवा देनी है, किसी को सुकून देना है। सब बातें हमारे बीच में शामिल होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम माफ़ करना सीखें, पुरानी बातों को ना दोहराते रहें, बल्कि गलतियों को पकड़कर हम हमेशा के लिए ना बैठ जाएं। दूसरों को और खुद को हम माफ़ करना सीखें तो ज़िंदगी और खुशहाल बनती है। तो चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी गीत के साथ आज का एक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। संजय शर्मा को दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: ये सारे किसान बागवान कने पशु पालक भाई बहना जो आशा कने मेरे सहयोगी
1: मंगलांदा प्यार भरा
0: नमस्कार
1: नमस्कार राम राम।
0: सारे ही किसान भाइयों का तिना दे पसंदीदा कार्यक्रम विच स्वागत है। कने अहे उम्मीद करा दे कि अहां दे सारे किसान बागवान भाई बहन अपनी सेहती दा स्वास्थ्य दा पूरा पूरा ध्यान जे असे रखा दे होने।
1: सच गलाया आसा बोबो, ए टाइम भी एड़ा चलिया कने बे सेहती दा कने स्वास्थ्य दा ध्यान जे असे रखना पौना भी आ
0: जी,
1: क्योंकि टाइम चली दा छिपछिपी गर्मियां दा।
0: हाँ
1: कने इह गर्मी ने क्यों हुंदा वे संक्रमण फैलदा, कने कीटाणु जेड़े परजीवी हुंदे ना असे पनपदे भी है,
0: जी
1: कने सौ बीमारियां जिसे लगी आंदियां भी।
0: जी आजकल जी ऐसे मौसम च भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव जी ऐसे दिखने को मिला दा भी है। कने बरसातां भी शुरू हो गई भी है ना, आहे दो तीन दिन ते दिखा दे भी रोज जे ऐसे बरखा हो या आदि कदी जे ऐसे बदल चढ़ी रह दे भी है, ते दे मौसम च ना आहे दिख दे हर जगह जे ऐसे सीन सलाब बनी रही रहती भी है ना। कने कोई भी चीज जे ऐसे अंदरले पास चली रही होंगी जीजू कंडू मक्खी मच्छर ए जी ऐसे बीमारियां जो फैलाने का काम करते भी है। कने रसोई घर च भी जेड़ा भी आहे खाने पीने का समान रखी रहा होंदा भाई, तिना च भी सीन सलाब जे इसे बनी रही रहती आहे दिखते भी कणक च गुच्छे पई आंदे भी है, आटे च जे ऐसे पठलियां पई आंदी या फिर गुच्छे जे ऐसे बनी आंदे भी है, रसोई घर च जेड़े मसाले तिना च जे इसे भी लाई आंदी भी है ना। ताहे दिखते भी नमी होने रही वजह ते खाने पीने रही चीजा की गुणवत्ता भी खराब होना शुरू हो जाती भी है।
1: सच गलाया क्योंकि वातावरण च हो जाती नमी, तो यह फिर इन चीजों जो जी असर प्रभावित कर दी भी
0: जी।
1: तो इसने सौगी सौगी अजकल क्या होता भी आंदा काम जो सह भी बधी आंदा भी आ, पर चल भी इन चीजा तो अहम ध्यान रखना ही आ भी अह अपनी चीजा भी बचानी कन सौगी सौगी अपनी सेहती का भी ध्यान रखना अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखना भी आ
0: जी।
1: सौगी सौगी अपने खान पान कन जो पहनावा इस बिच भी बदलाव करना पौंदा भी आ।
0: बिल्कुल ठीक गलाए भी है कि नहीं सौगी जे ऐसे जी लगातार बरखा होती रहती तो जगह जगह जे ऐसे पानी रे डक लगी आंदे भी है, कने जाली जे पानी बड़ी देर एक ही जगह खड़ा रहता भी है तो तीस च कई तरह के कीटाणु जी ऐसे तैयार हो जाते या मक्खी मच्छर जी ऐसे तैयार हो जाते, तो जाली जे बरखा चुकी आती ना तो हाँ जे ऐसे अपने घर अखे बखे या जी नालियां या चले तीन आले पास जी ऐसे दिखना अगर कुछ पानी कट्ठे हो रहा गंदा तो अह उ नथारी देना। इस होगी जी ऐसे खेतरों के भी अह चले बन्ने जी ऐसे जरूर देखने भी आए, क्योंकि बड़िया बरखा से जी ऐसे चले जगह जगह से ढही आते भी आए, कने खेतरों से जे ऐसे पानी भरोई आता भी आया तो फिर बड़ी देर जे ऐसे पानी खेतरां च रहेगा भी आया ता फिर यहाँ दी फसला जो जे ऐसे नुकसान दे येंदा भी आया।
1: बिल्कुल, तो सारियां चीजां दा जैसे अहां ध्यान रखना भी आ। कने अजकल जेड़ी जे गर्मी ना छिपछिपी गर्मी जरा कर बरखा हो दी कने फिर जे है गर्मी पई आ दी तो इससे क्या होंदा भी सर्द गर्म होने का भी खतरा रहंदा भी आ, तबे अपना ध्यान रखना। कने अगर जे अजके दिनां दे तापमान की गलबात करिए ना तबे दिन ज्यादा तो ज्यादा रही 30 डिग्री सैलसीयस ना, कने संझा पया घट तो घट
0: 3 डिग्री सैलसीयस।
1: हाँ
0: मौसम विभाग से यही जानकारी मिला दी कि आने वाले 3-4 दिन जे ऐसे मौसम आई बनी रहना टक कुआट जे इसे दिखने को मिलनी भी आई, तो भाई इन दिनों जे ऐसे मौसम का रुख दिखीने करने यहाँ अपने कामकार जे ऐसे करने भी आए।
1: बिल्कुल सौगी सौगी अपनी चेतनगी भी जरूर बरतनी
0: जी। तो देखो भी मंगला हाँ दे किसान भाई तो पूरी मेहनत कर दे अपने खेतर च ताकि तिने जेड़ी भी फसल लगाई तिचते अच्छा उत्पादन जे ऐसे अहां जो मिलो, पर टेमा टेमा चाहां दी सरकार भी किसान भाइयों वास्ते कई नई नई स्कीम ले इन्हें करने आंदी जिन्हों का फायदा ले इन्हें अहां दे किसान भाई जे ऐसे अपनी आमदनी जो होर ज्यादा बेहतर जी ऐसे बनाई सकते भी है।
1: बिल्कुल, तो कुछ एड़ जी गलबात जी आज हम अपने सुनने वाले जी से साझा करनी भी। सरकार दे पासे ते चलाए दी एक योजना है श्री अन्न योजना
0: जी।
1: यह योजना दे माध्यम ते सरकार है किसानों जो जी से क्या क्या सहूलत जी से दिती दी भी।
0: श्री अन्न योजना जी इसे जेड़े मोटे अनाज होंगे भी है ना।
1: हाँ
0: जी बाजरा हो गया ज्वार रागी या फिर कोंदो कुटकी इन्हों की पैदावार बढ़ाने वास्ते खपत कने निर्यात जो बढ़ावा देने वास्ते जे है शुरू कीती री भी है। इक ने इसका लक्ष्य यही है कि किसान भाई जे ऐसे मोटे अनाज उगाई ने करने की या जे ऐसे अपने उत्पादन जो बढ़ाई सकते भी है, इक ने अपनी आर्थिकी जो जे ऐसे मजबूत करी सकते भी है।
1: दिख आसा सार ते बड़ी गल ए ना बे तै भी सुनी दा होना बे अहां दे सियाणे जे बे सहां जो दसदे कि बे पहल के जमाने विच से इना मोटे अनाज दी खेती करदे हे कन सेहतमंद कन तंदुरुस्त भी रहंदे हे
0: जी,
1: पर औले औले जियां जियां चीजां घटदियां गईयां ना उइयां उइयां क्या होया बे बीमारियां मारियां भी लगदियां गईयां
0: जी।
1: पर हुण पीरी जी से जागरूकता फैला दी कि ये जेड़ा मोटे अनाज है अहां दे स्वास्थ्य ताए खरे हुंदे अहां दे पाचन तंत्र जो जे ऐसे ठीक रखते भी है
0: जी।
1: जे नौ सिर ते कम कार शुरू होना ता इस कम कार जो करी ने जैसे किसान की आमदनी भी खरी होनी
0: जी।
1: कने इस बीच सरकार भी अपने पास से जैसे एक कदम बढ़ाए दा कि इस दे ना ते योजना खोली ने जैसे किसान जो एक सूरत जैसे दिती दी भी कि अगर कोई इच्छुक आदमी हो तो इस कम कार जो शुरू करने जैसे अपनी आमदनी जैसे अपनी आर्थिकी जैसे ठीक करी सकते भी
0: है। मोटे अनाज जे है पोषक तत्व भरपूर मात्रा च पाए जाते भी है, इस च प्रोटीन फाइबर कने खनिज लवण जे है अच्छे पाए जाते भी है, जेडे अहां दे स्वास्थ्य वास्ते जे है काफी ज्यादा जरूरी होंगे भी है। कने इस तरह का अनाज खाने ते जे है अहां दा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहिंदा भी है। आ जी अहे बोले ना कि ये जी श्री अन्न योजना यानी कि जेडे मोटे अनाज इस च केड़े अनाज जे है शामिल किए गए रे भी है, जियां ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, कुटकी, कोंदो, सावा, होर भी कई तरह के पारंपरिक अनाज जे ऐसे इस च शामिल किए गए रे भी है, जिन्हां दे ताए जे ऐसे अहां दे किसान भाइयों जो लगाने वास्ते जे है प्रेरित किया जाता भी है। आ उन्नत किस्म के जे ऐसे इन्हां अनाजा के बीज उपलब्ध करवाए जाते भी है। कृषि बुनियादी ढांचे जे ऐसे कई तरह की सबसिडी अहां दे किसान भाई है जो दी जाती भी है ताकि अहां दे किसान भाई जी ऐसे आर्थिक रूप से सक्षम बनी पान।
1: सच गलाए बोबो, यह योजना चलाने दा सरकार दा ए उद्देश्य आ कि किसान जो प्रोत्साहन मिले भी। सरकार किसान जो श्री अन्न योजना दी खेती ताए जैसे वित्तीय सहायता भी दिंदी कने इच्छुक लाभार्थी जो प्रशिक्षण भी दिंदी भी
0: जी।
1: सोगी सोगी जिया उन्नत बीज कने सब्सिडी भी दिंदी कने यह योजना चलाने दा सरकार दा ए भी उद्देश्य आ कि उत्पादन दा विस्तार हो सके भी। भारत जे ऐसे दुनिया च सारे ते बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश आ कने सरकार दा ए ही लक्ष्य आ कि इस दी उत्पादकता दे रिकॉर्ड इसे वृद्धि करना
0: जी। बिल्कुल तो भाई इस तरह जे ऐसे किसान भाई हैं जो मोटे अनाज उगाने वास्ते जे ऐसे प्रेरित किया जाता भी है कने मंगला है दिखा दे कि बाजारां च भी मोटे अनाज दी मांग जे इसे दिन प्रतिदिन बढ़ना लगी रही भी है। कने मोटे अनाज दी अगर अहां दे किसान भाई खेती कर गे उत्पादन जे ऐसे तैयार कर गे तो तिना दी मांग जे इसे जिस हिसाब जे बाजारां च बढ़ना लगी रही भी है तो अहां दे किसान भाई हैं जो दाम भी अच्छे मिलने कने किसान भाई दी आर्थिकी भी मजबूत होनी भी है।
1: पर भाई ये सारे फायदे भी हाँ जो ताए मिलने हैं अगर जे अहे भी थोड़े बहुत हाथ पैर लगांगे था। सरकार ने तो भाई अपने पास से पहल करी थी पर अहां जो भी पहले ही है योजना ने जुड़ना पौना ता फायदा मिलना
0: जी। तो इस दे ताए जे ऐसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके ने करने आवेदन करी ने आहे जुड़ी सकते भी है कि श्री अन्न योजना दा फायदा जे ऐसे ले सकते भी है।
1: कने फिर भी कुहा गल्ला दा पता सता नहीं लगो तो जड़ जांदे कृषि विभाग केंद्र हुंदे ना बितिथि जाए ना पता सता करी सकते भी है।
0: तो ए तो गल बात रही श्री अन्न योजना दे बारे च गल्ला बातां कार्यक्रम विच किसान भाईयां सोगियां हां होर भी सांझा करनी पर गल्ला बातां ने करने करने जे ऐसे कार्यक्रम दा अहम हिस्सा रहंदा से आ मनोरंजन दा।
1: बिल्कुल तो अपनी गल्ला बातों देना इत्थे विराम कने सुनना एक लोक गीत
0: जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। 7:06 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये मैच साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। हम आपको याद दिला दें, प्रसारण को न्यूज़ ऑन AI ऐप पर भी आप सुन सकते हैं।

0: दिखने लोक गीत तो सुनी लिया पर बड़ी काली दिखे पांदी कुछ गल्ला जी होंदियां ना बोबो है तसली आली ही होंदियां निश्चय ने सुनी दियां निश्चय ने समझी दियां।
1: अच्छा अच्छा पाई है तो उन और दसी दे क्या गल दसनी।
0: सही गला दी पे तू जाना जी तेने दाए समझाना ना कने और ना बच्चन जो भी दिख एड़ी जी गल्ला जी से पता होना चाहिए ना दिख पे यहाँ जो यह गल्ला दा भी ध्यान रखना चाहिए भी जेड़े जी बच्चे दा आइडेंटिटी कार्ड हुंदा ना तो तिस पर बच्चे दा नाम भी हुंदा माता पिता दा नाम हुंदा फोन नंबर लिखे हुंदा तो है ध्यान रखना अहां पे यहाँ दा बच्चा आईडी कार्ड पहनी के जा दा कि नहीं जा दा।
1: हाँ भाई देख कई बार होंगे ही है ना कोई घटना घटी आओ तो यहाँ होंगे भी अगर पता हो ना तां कुसी जो है सूचना दे सकते हैं। दूजी गल होंगी भी है जे बस सारे ड्राइवर कंडक्टर होंगे हैं तिना सौगी भी अहां जो जी ऐसे थोड़ा तालमेल बिठाए ने रखने चाहिए है
0: और
1: ना।
0: पता होना चाहिए ना हाँ जब हाँ बच्चा कुछ बसा च ज्यादा काली टाइमिंग सब कुछ पता होना चाहिए तो ये हाँ जो जरूर यह चीजें ताई जी से सतर्कता बरतनी चाहिए।
1: कने बच्चों जो भाई यातायात दे नियम दे से जरूर दसने हैं है ना पेड़ नहीं करना ही है पे यहाँ जी मर्जी थी जे बच्चे चली दे रहे हैं बच्चों जो समझाना ही है या पे बैठरी बस च कभी हाथ पैर मुंह जे ऐसे बाहर नहीं कढ़ना ही है या तिन्हों जो सख्ती है दसना कने क्योंकि बच्चे जे होंगे है गलाया नहीं मनते ने तो तिन्हों जो कदी कदी सख्त भी होने पाता ही है
0: हाँ
1: या
0: पे इक्की कन्ने सुन दे ना दूए नकाल ही दिन दे।
1: तिन्हें जो दसना पे आ जो सावधानियां बरतनी चाहिए आई क्योंकि अगे ते जे असे जल यहाँ सड़क पार करते हैं ना ता एक पहली गल तो उन्दे पे हाँ जो सड़क करे दोनों तरफ दाएं बाएं जैसे दिखने चाहिए ही या कने जेवरा क्रॉसिंग दा ही प्रयोग जैसे करने चाहिए ही या सड़क पार करते टाइम इसरे अलावा तीन जे बस ते उतरते हैं बच्चे तो सड़क पार करनी पौंदी आई तो बच्चों जो हमेशा जे असे बस अरे अगे ते सड़क पार करनी चाहिए ताकि ड्राइवर तीन जो आसानियां ने दिखी सको एड़ा नहीं करना पे यहाँ जो बस अते उतरे आए कने बस अरे पिछले साइड अते जैसे सड़क का पार करने लगे तो कई बार जैसे दुस देनी कने बस चलाई थी या फिर पीछे जो करी दीती है बस तो उससे भी दुर्घटना घटने का खतरा जैसे बनी रहा।
0: हाँ तो भाई ये चीजा तो जरूर सिखानियां कने दे भी अहां तुहां जो ये रोजमर्रा ये गल्ला बात होंगी है ना ये पता भी होना चाहिए कने अगर जिथे जी बच्चे दसने की गल तिथे दसना भी चाहिए।
1: हाँ भाई ये दिखा बच्चों की सुरक्षा जे इसे बड़ी भारी मायने रख दी आई सुरक्षा सारे दी मायने रख दी कने ये जे यातायात दे नियम होंगे ना बच्चों ते लेने ने बुजुर्गों ते लेने ने बड़िया ते लेने ने
0: सबना
1: छोटिया
0: जो
1: तक सारे जो जे आ
0: जरूरी है
1: सह जरूरी हैं कने इन्हें यातायात दे नियमों का पालन अहां जो जरूर करने चाहिए ताकि अहें आपू भी सुरक्षित रहन कने सजे अहारा आस पास आ सह भी सुरक्षित रहो।
0: हाँ तो दिख पे गल्ला बातें बैठियां तो ढेर सारियां करी लिया।
1: हाँ भाई ढेर सारियां कर लिया कने हूं टाइम हो गया बड़ा पारी हूं मैं जाना करा खो चली तेरे स्नेह पुजवाई देंगी है ना।
0: हाँ तो तू भी दाएं जाए दिख पे यातायात दे नियमों का पालन करना ना पर इंगे जी जाना ता भी थोड़ा दाएं चलना।
1: हाँ भाई सतर्क होने जांगी चल भाई ठीक है सिमरो रे ही राम राम
0: ठीक है बाबा राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रौनक आंकड़ा दिया। श्रोताओं, हमें खेद है, क्रिकेट मैच का समय बदला है। यह मैच अब रात्रि 10:30 बजे से होगा। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल का आंखों देखा हाल आप रात्रि 10:30 बजे सुनेंगे। ये मैच साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ

0: colleges.
1: Comprimium, ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आइए सुनते हैं फिल्मी भजन।

फिल्मी भजन आप सुन रहे हैं एफएम हमीरपुर से। हम आपको पुनः याद दिला दें, हमें खेद है कि अब आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मैच जो साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा, अब रात्रि 10:30 बजे से ये आप इसका आंखों देखा हाल सुन सकेंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्मी भजन आप सुन रहे हैं एफएम हमीरपुर से।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:45 होने को हैं, बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप पहुंची ओमान। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे किसानों के लिए खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश में जल्द लाई जाएगी नई औद्योगिक नीति, पर्यावरण अनुकूल व अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार, सीबीएसई स्कूलों में मेरिट आधार पर होगी अध्यापकों की नियुक्ति। नगर निगम सोलन में महापौर पद पर भाजपा की जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार की साजिशें हुई नाकाम। और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने नाहन में किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप ओमान पहुंची है। वहां के लोगों ने हिमाचल के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता व स्वाद की सराहना की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोलेगी। उन्होंने बागवानों से गुणवत्ता, ग्रेडिंग और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि हिमाचल वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले फलों के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, जिसमें पर्यावरण अनुकूल और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज नाहन में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस नीति में स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर जोर रहेगा।
1: हमने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, जिसमें कि हम ज्यादा प्रमोट, हम जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूनिट्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। जो वाटर कंज्यूमिंग यूनिट्स है, जैसे एथेनॉल का बहुत चलन है, उसको हम डिस्करेज करेंगे। पावर कंज्यूमिंग यूनिट्स है, सरिये वाले यूनिट्स है, उसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे। ऐसी यूनिट्स को हम प्राथमिकता देंगे जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और हमारी कोशिश है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, वहां पर हमारी इंडस्ट्री जाए, ताकि हमारे जो फ्रूट बेस्ड है, फूड बेस्ड है, हमारे कोल्ड स्टोरेज चेन्स है, इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी जल्द आने वाली है।
0: उद्योग मंत्री ने बताया कि आरडीएस योजना के तहत सिरमौर जिले में 157 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि बिजली सेवाओं को मजबूत किया जा सके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति नीति भी मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में सूची लगभग 90% तैयार हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सीबीएसई अध्यापकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने पर सहमति बनी है और अब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय का कार्य शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा।
2: मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो। उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं, उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, उसके आधार पर ये सारी बातें हो। तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी उसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहां तक हमारे शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा स्टैंड इसको लेकर क्लियर है कि मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियां शीघ्र हो।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज सोलन में आयोजित जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को भी कहा। सुरेश कश्यप ने सभी खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
3: वो सोलन जिला की दिशा की बैठक थी और इसमें हमने भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं इसका रिव्यू किया और की समीक्षा करके हमने निर्देश भी दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से जो इन योजनाओं को पूरा किया जाए। हमने पीएमजीएसवाई की जो हमारे सड़कें जिनका निर्माण का काम चल रहा है और हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ लगभग 52% रोड्स ऐसे हैं जो पीएमजीएसवाई के तहत बने हैं।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नगर निगम सोलन के महापौर और उप महापौर के चुनाव आज संपन्न हुए। इसमें भाजपा की 4 बार की पार्षद सुषमा शर्मा महापौर जबकि निर्दलीय चुनाव लड़े गौरव राजपूत उप महापौर निर्वाचित किए गए।

0: दोनों जनप्रतिनिधियों ने सभी 17 वार्डों में एक समान विकास करवाने की प्राथमिकता दोहराई। उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरोसा भी दिलाया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम सोलन में भाजपा की महापौर सुषमा शर्मा और गौरव राजपूत को उप महापौर निर्वाचित होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये जीत लोकतंत्र, जनविश्वास और सुशासन की राजनीति की जीत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये परिणाम स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से निराश है और जनप्रतिनिधियों के विवेक के सामने सुक्खू सरकार की साजिशें नाकाम साबित हुई हैं। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल में पहाड़ी से पत्थर गिरने की दर्दनाक घटना में एचआरटीसी के परिचालक ज्ञान सिंह की मौत हो गई। ज्ञान सिंह मंडी जिला के जोगेंद्रनगर क्षेत्र के लड़बड़ोड़ गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार बस अपने निर्धारित रूट पर थी और आज सुबह म्याड़ नाला के पास बस रुकने पर ज्ञान सिंह ब्रश करने के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनके सिर पर आ गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि प्रदेश में दो दिनों के भीतर पत्थर गिरने से मौत की ये दूसरी घटना है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने आज नाहन में महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति की राज्य अध्यक्ष संतोष कपूर ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रदेश सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने और रोजगार के अवसर बढ़ाकर आम जनता को राहत देने की मांग की है। संतोष कपूर ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
1: इस विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान के अंदर जो है हमारा देश की जो सरकार है उसके प्रति आक्रोश है। देश और प्रदेश की सरकार को भी साथ में कि ये जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जो हालात आज बने हुए हैं उन हालातों के ऊपर अभी भी कंट्रोल कीजिए, अन्यथा जो है देश के अंदर आक्रोश और महिलाओं का रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में हम ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर रसोई गैस की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं की गई तो ये आक्रोश जो बढ़े।
0: प्रदेश कांग्रेस ने आज से राज्य में संगठन विस्तार अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान अगले एक महीने में 8 से 10 हजार लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले दिन आज शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रामपुर से 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे ब्रिजलाल ने 250 से अधिक सदस्यों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
2: संगठन विस्तार कार्यक्रम इसकी आज हमने शुरुआत की है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य जी हमारे साथ है और रामपुर से हमने इसका शुरुआत किया है और आज ब्रिजलाल जी रामपुर से संबंध रखते हैं और ये अपने कम से कम 250 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ है और सभी लोगों ने यहाँ पार्टी को ज्वाइन किया। इसी प्रकार के प्रोग्राम जो है हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे और पूरे प्रदेश में लगभग हम 8 से 10 हजार लोगों को जोड़ेंगे।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने का दावा पूरी तरह झूठा और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जन विरोधी नीतियों और विफलताओं से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का राजनीतिक नाटक कर रही है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप पहुंची ओमान। मुख्यमंत्री ने कहा इससे किसानों के लिए खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा प्रदेश में जल्द लाई जाएगी नई औद्योगिक नीति। पर्यावरण अनुकूल व अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार सीबीएसई स्कूलों में मेरिट आधार पर होगी अध्यापकों की नियुक्ति। नगर निगम सोलन में महापौर पद पर भाजपा की जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा सुक्खू सरकार की साजिशें हुई नाकाम। और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने नाहन में किया प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
4: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
5: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
4: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
3: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है।
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको पुनः याद दिलाते हैं, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल अब रात्रि 10:30 से आप सुन सकेंगे। ये मैच साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा।

बरसात के मौसम में हमें विशेष एहतियात बरतनी चाहिए और सतत प्रयास रहे कि हम कदम कदम पर संभल कर चलें और स्वस्थ रहने के लिए हमेशा स्वस्थ तरीके ही अपनाएं। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं आपसे लेकर 8:45 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए।

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं प्रहसन सिलसिला बहानों का। लेखक हैं सुरेंद्र कौशिक, निर्देशक सुशील बैनर्जी।
1: हे भगवान, 7:30 बज गए, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। लड़के ने आंखें सुजाली रोते रोते, रोए नहीं तो क्या करेगा भागा, कैसे स्कूल जा पाएगा कल वो बेचारा बिना जूते। और ये श्रीमान सिकंदर खुसट विलंबित जी उर्फ हमारे लेट लतीफ पति देव अभी तक नहीं लौटे।
2: सिकंदर भाई, सिकंदर भाई।
3: कौन कौन है? अरे भट भैया आप।
2: ना सिकंदर भाभी, सिकंदर भाई घर में ही होंगे ना? क्या हाल है अब नरेश बेटे का? अरे कैसी गिरी इमाम दस्ते की इतनी भारी मूसली पांव पर?
1: इमाम दस्ते की मूसली? हाय हाय, चुप चुप बोलो भट भैया, नरेश तो अभी अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। अच्छा भला
2: ट्यूशन पढ़ने? तू नरेश बेटे को कोई चोट या फ्रैक्चर नहीं हुआ?
1: नहीं तो।
2: और सिकंदर भाई कहाँ है?
1: वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी, अभी तक नहीं लौटी है दफ्तर से।
2: दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे, छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पांव पर इमाम दस्ते की।
1: फिर वही इमाम दस्ते की मूसली? अरे भैया हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं है, वो मरी मिक्सी है।
2: मिक्सी? इमाम दस्ता वो?
1: पर भट भैया बात क्या है, कुछ कुछ बताओ तो भट भैया।
2: अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर जब फिर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल।
1: चप्पल?
2: जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए।
4: शुक्र है सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना अभी तक। फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए मर गए, मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है।
5: भी सर। तो आज भी आप पूरे 1 घंटे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खुसट विलंबित।
4: सर वो
5: देखा
4: वो,
5: मिस्टर भट्ट
2: विलंबित जो ठहरे सुपरिंटेंडेंट साहब।
5: तो श्रीमान विलंबित जी,
4: जी
5: अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है?
4: जी सुपरिंटेंडेंट साहब बात ये है।
5: बोलो बोलो, मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाना।
4: जी जी मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुपरिंटेंडेंट साहब।
5: अरे मगर क्यों, अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट तो किया नहीं।
4: जी वो मैं समझा नहीं सर।
5: मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना बाकायदगी के साथ अमल करते आ रहे।
4: कैसा कैसा सिलसिला?
5: अरे भाई बहानों का सिलसिला विलंबित जी। कल आप लेट इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई।
4: जी हाँ जी हाँ।
5: और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे।
4: जी हाँ।
5: क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके।
4: जी हाँ जी हाँ, ये तो मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था सर।
5: परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया, अपने ससुर जी की पहली बरसी।
4: मिस्टर भट्ट माइंड योर ओन बिजनेस।
2: मगर सिकंदर भाई, अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई, तुम्हारे तो शायद 2-2 साले हैं।
4: मगर हाँ वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं, वहाँ शराब खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा।
5: ओ आई सी।
4: जी सुपरिंटेंडेंट साहब, ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था?
2: जी हाँ सुपरिंटेंडेंट साहब, आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है, जैसे पिता का श्राद्ध वैसे ही ससुर का, पत्नी का पिता अपना पिता।
4: आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट, देख लिया सुपरिंटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का। क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरेगा कब?
5: छी छी छी, इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर। एक तो आप लेट आए।
4: तो इन लोगों को क्यों दर्द होता है सर, क्रॉस लगाए मेरे नाम के आगे, डांटने का हर सारा आपको है, सेक्शन इंचार्ज को है, ये क्यों टकराते हैं मेरे लेट आने पर? दे शुड सी देयर ओन वर्क, अपना काम देखें।
2: हमें अपने काम के अलावा आपका काम भी देखना पड़ता है मिस्टर सिकंदर, जब आप सीट पर नहीं होते।
4: ऐसी कौन सी आफत आ रही है?
5: टॉक सेंस मिस्टर सिकंदर, ऐसे अर्जेंट मामलों के भी लटके रहने या लेट हो जाने के कारण ये नहीं है कि हम लोग वक्त जरूरत अपने काम पर नहीं होते। घंटों अपनी सीटों से गायब रहते हैं या फिर आपकी तरह हमेशा लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। काम के प्रति तुम्हारे मन में कोई कर्तव्य भावना नहीं है?
4: नहीं।
5: चलिए चीफ के पास।
4: नहीं सुपरिंटेंडेंट साहब, कर्तव्य की भावना नहीं होती तो क्या इतनी भयंकर स्थिति में मैं ऑफिस आता?
5: क्यों आज क्या हुआ बोलो।
4: वो सर मेरे छोटे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया सर।
5: What? अरे ये कैसे हो गया सिकंदर भाई?
4: सीधा अस्पताल से भागता चला आ रहा हूँ मिस्टर भट्ट, रास्ते में चप्पल भी टूट गई।
5: और तुम्हारा लड़का क्या प्लास्टर चढ़ा?
6: हाँ सर, प्लास्टर चढ़ने के बाद उसे उसकी माँ टैक्सी में डालकर घर ले गई और मैं इधर ऑफिस को भागा। मुझे पता था सर के अर्जेंट पेपर डील करने हैं।
5: ओह आई एम सॉरी मिस्टर सिकंदर।
6: ऑलराइट सर।
2: मगर भाई फ्रैक्चर हुआ कैसे?
6: वो इमाम दस्ते की मूसली गिरा दी मेरी लड़की ने उसके पैर पर।
5: ओह माय गॉड, अब कैसा है तुम्हारा लड़का?
6: क्या मालूम कैसा है सर, मैंने तो रोते रोते छोड़कर उसे दफ्तर की ओर लपका था, अब तो घर शाम को पहुंच कर ही देखूंगा।
2: अरे अरे बेचारा मासूम बच्चा। अरे भाई तुम चाहो तो साहब से कहकर बेशक जल्दी घर चले जाना सिकंदर। क्यों सुपरिटेंडेंट साहब?
5: हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मगर मिस्टर सिकंदर की सीट पर कई अर्जेंट पेपर है।
2: वो मैं देख लूंगा सर, आप इसे जल्दी जाने दीजिए। हाजिरी तो इसने लगाई दी है सर।
5: अच्छा मिस्टर सिकंदर, अभी तो चीफ का राउंड होने वाला है, एक दो घंटे बाद चले जाना।
6: थैंक यू सर, मैं 3 बजे चला जाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
7: हाय राम, 3 बजे की चली अब तक घर नहीं पहुंची, और भैया 7 बजे दुकानें बंद होती है। नरेश कल से स्कूल के सफेद जूतों के लिए रो रहा है।
2: आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूँ, और हद होती है बहानेबाजी की भी। मैं तो बच्चे की खैर खबर लेने आया था और
7: उन्हें खुद अपने घर की खबर नहीं।
2: तो सिकंदर भाई वाकई पक्के बहानेबाज बन चुके हैं।
7: पक्के से पक्के कहो बट भैया, कई बार तो हमारा भी दिल दहल जाता है उनकी झूठी बातों को सच समझ कर। उधर दफ्तर वाले हम औरतों को ही दोषी मानते होंगे अपने पतियों के लेट कराने के लिए। अरे भैया तुम उनके साथ ही हो, किसी तरह खत्म कराओ ना उनकी बहानेबाजी की आदत, हम तो भट भैया बहुत परेशान हो चुके हैं।
2: और उधर दफ्तर के लोग भी भाभी जी, उनका रोज रोज का लेट आना, नित नए बहानों का सिलसिला, वो भी ऐसा तगड़ा कि बस क्या कहें।
7: मगर झूठ तो झूठ ही होता है भट भैया।
2: अगर उस झूठ को झूठ साबित करने के लिए क्या दफ्तर के अफसर रोज रोज घरों में जाकर जांच पड़ताल करें, बीवी बच्चों से सच्चाई उगलवाएं? घर वालों का भी कोई फर्ज होता है।
7: नहीं नहीं भैया, यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है।
2: कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई, बुरा तो मानेंगे मगर राह रास्ते पर तो आ जाएंगे।

0: हाय राम, अभी तक गुसल खाने के फवारे के नीचे भरत नाट्यम कर रहे हैं। अजी सुनते हो?
1: अरे क्या है, आ रहा हूँ।
0: घंटे भर इस फुवारी की भागीरथी को अपने सिर पर धारण करके तुम्हारा गटवा गीला नहीं हुआ? मैंने कहा निकल आओ, 10:30 बज चुके हैं, तब तो नहीं जाना आज क्या? अरे छुट्टी लेनी है आज की।
1: अरे क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उस दिन की छुट्टी लूँ जिस दिन खुद अफसर छुट्टी पर हो।
0: अजी वाह, बड़े कर्तव्य परायण हो गए हो, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे हो।
1: बिल्कुल,
0: मगर जब इतनी वफादारी की भावना जाग उठी है तो फिर लेट भी क्यों जाते हो? सुनो जी, कब तक उल्टे सीधे बहाने बनाते जाओगे? फंसोगे किसी दिन बुरी तरह, श्रीमान सिकंदर खूसट विलंबित जी।
1: अरे जा जा, बरसों बीत गए नौकरी करते करते, पूरी मौज मस्ती से है। अरे ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अफसर नाराज होने की बजाय सक पका कर हमदर्दी जताने लगता है, और जितने लेट पहुंचे उतनी जल्दी छुट्टी पर जाने की कह देता है।
0: हाय राम, कैसे ढीठ होते हैं ये लेट लती।
1: और फिर आज तो हम खुद ही अपने अफसर होंगे। अरे पहुंच जाएंगे टहलते टहलते और लौट आएंगे जब तुमसे मिलने को दिल बेताब होगा।
0: चलो हटो भी, चलकर नाश्ता कर लो और दफ्तर पहुंचो वक्त से। हम औरतों को बदनाम मत करो। हाँ।
1: अरे वाह, दफ्तर लेट पहुंचे हम और डरो तुम लोग। चलो बेटा सिकंदर भाई, पत्नी का दर्द। ओके बाय।
2: ये सर, मैं सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ।
1: मर गए। अरे सुपरिटेंडेंट साहब तो वो बैठे भीतर कमरे में।
2: यस सर, मैं तो आपका मैसेज मिलते ही दफ्तर पहुंच गया था सर, मगर मैं क्या करूं सर, वो उस अर्जेंट केस की फाइल शायद मिस्टर सिकंदर की मेज की ड्रॉअर में लॉक्ड है सर। जी हाँ, मिस्टर सिकंदर अभी तक नहीं आए सर। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी मैं कोशिश करता हूँ सर।
1: अरे बाप रे, यहाँ तो नजारा ही दूसरा है। फंसे बेटा सिकंदर, आज तो साहब मेरा ही अर्जेंट केस बना देंगे। अरे अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊँ लेट आने का। हाँ चुपचाप यहाँ से दबे पाऊँ घर लौट जाऊँ और बीमारी की छुट्टी मार दूँ। अरे नहीं, वो फाइल तो मेरी ड्रॉअर में बंद है, ये चाबी लेने

0: सर उल्टिया, सर उल्टी ऊपर उल्टिया, सर तन घुटने लगा, फिर उल्टिया, उल्टी ऊपर उल्टिया, सर मैं घर आ गया, टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। जब तक सर
1: तब तक क्या क्या, क्या हुआ, क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई
0: सर।
1: हाँ बोलो।
0: उल्टियां बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर सर के वो
1: हाँ बोल भाई बोल,
0: वो पाँव भारी है।
1: पाँव भारी है यानी कि नए बच्चे की मां बनने वाली?
2: आपको कोई तकलीफ है?
3: आई से शट अप
0: जी,
3: यू लायर, झूठे बहाने बात मत कर।
0: सुपरिटेंडेंट साहब आप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये ऑफिस है सर।
3: अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कारों। वाह क्या बहाना बनाया है, बीवी का पांव भारी है। आई से इट इज इम्पॉसिबल।
1: माफ कीजिए सर, मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं?
0: यस सर,
1: सर सच्चाई तो कुछ महीने बाद सामने आई जाएगी सर।
3: सच्चाई?
0: यस सर।
3: अरे ऐसे झूठे बहाने बाजों के कारण तो सच्चे लोगों पर से भी विश्वास खत्म हो गया। सच्चाई जानना चाहते हो?
0: यस सर।
3: तो ये देखो ये रही सच्चाई।
1: ये कैसा कागज है सर?
3: तुम ही पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर।
0: यस सर। अरे सर ये तो मेरे स्पेशल इंक्रीमेंट का ऑर्डर है सर।
3: ऑर्डर नहीं अभी ड्राफ्ट है, खुद मैंने तैयार किया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
1: स्पेशल इंक्रीमेंट का?
0: यस
1: सर। कौन हकदार होता है इस स्पेशल इंक्रीमेंट का?
3: जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई और खुशहाली का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठाते हैं।
1: मिस्टर सिकंदर इतने समझदार कब से हो गए सर?
3: ये भी जानना चाहते हो? ये रहा दूसरा कागज, बताओ सिकंदर क्या है ये कागज? बोलो।
0: ये तो मेरा फैमिली प्लानिंग यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट।
3: छी छी सिकंदर, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घिनौने झूठ तक पहुंच सकता है?
0: बस सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए।
3: आई विल सी दैट यू आर डिसमिस्ड।
0: आई विल नॉट मेंबर हो जाऊंगा सरकार, मैं मर जाऊंगा सरकार। मैं अगर नौकरी छूट गई साहब कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा गले में बंदा था।

सिलसिला बहानों का। अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र कौशिक का लिखा ये प्रहसन। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।

आइए सुने चित्रलोक। सुनिधि चौहान की आवाज में चमेली फिल्म का गाना, इरशाद कामिल के बोल, संदेश शांडिल्य की तरह से।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।
1: आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान, गर्दिशों में है सितारे, बात हमने मान ली। अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली के आज हाथ थाम।

परिणीता फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में आपने सुना। अब मोहित चौहान और ए आर रहमान की आवाजों में ये गाना सुनिए। फिल्म का नाम है रॉकस्टार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि

0: भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले 1 वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
4: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
3: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
4: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो-पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
3: Briefing media in New Delhi this evening, Foreign Secretary Vikram Misri said that both leaders recognize that this is a relationship of trust, and trust was visible in abundance during the engagements today. He said today's engagements have yielded good results in areas including energy security and economic security.
5: The leaders reflected on the very strong foundation of our bilateral ties across multiple sectors, including trade and investment, economic security, defense, supply chain resilience, technology, innovation, and people-to-people exchanges. And both leaders acknowledged the role that our special strategic and global partnership plays insofar as peace, prosperity, and stability in the Indo-Pacific and even beyond is concerned.
3: India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. The two sides agreed to cooperate on the strategic stockpiling ecosystem, including sharing knowledge and experience on crude oil and petroleum product reserves, coordination with producing countries, and mechanisms for emergency response and market stabilization. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal today said that investments have emerged as a key driver of India's strategic partnership with Japan and are expected to further strengthen bilateral ties. Addressing the Indo-Japan Strategic Dialogue on Shaping the Asian Century, organized by a private television channel, Mr. Goyal said, opportunities are opening up for India's skilled workforce, while the government's focus remains on ensuring equitable development for all under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
6: It's a partnership that has many dimensions. Trade also is an important element of this partnership, particularly given our complementary strengths. What we get from Japan are largely technology-driven products. What we sell to Japan are also value-added products. We are not selling raw materials or intermediates. We're selling high-quality, precision-engineered material, auto component, electronic component. So, in effect, this particular relationship has both the trade and investment dimension. Therefore, I think it's a good partnership.
3: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Talking about India's handling of the situation during the West Asia crisis, Mr. Puri said that for a long time, the government controlled the prices of petrol and diesel and reduced the duties imposed on them. He said that the government always prioritized and focused on the interest of the citizens.
7: We have different projects, including refineries, which are at an advanced stage, and over the next 6 months to 2 years, they will be implemented. Those taken collectively would bring our refining capacity to about 300 million metric tons per annum. Now, this in and of itself is a noteworthy and remarkable figure. But if you see that in the context of what's happening in other parts of the world, it becomes more noteworthy.
3: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. Developed in collaboration with the Directorate General of Health Services and Delhi International Airport Limited, the upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travellers through real-time coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. The upgraded Air Suvidha 2.0 introduces a fully contactless and paperless health self-declaration system for international arrivals. Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said that artificial intelligence is no longer an option but an essential pillar of good governance. He emphasized the importance of using AI responsibly and intelligently. Addressing the valedictory session of the 29th National E-Governance Conference in Jaipur this afternoon, Mr. Singh said that achieving the vision of a Viksit Bharat 2047 requires a fundamental shift in administrative thinking. India has reiterated its firm stand that terrorism cannot be justified under any circumstances and called for united global action to eliminate the menace. Addressing the UN General Assembly during the adoption of the 9th review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said, "A terrorist is a terrorist," and emphasized that the counter-terrorism efforts should not be weakened by false equivalences or politicized narratives.
8: India has been a victim of cross-border terrorism for decades. Our people have paid a terrible price, and this experience has shaped India's zero-tolerance approach. Irrespective of any grievance, political cause, or strategic calculation, terrorism in all its forms and manifestations must be condemned unequivocally. India has worked to strengthen the global focus on terror financing. We have supported capacity building, South-South cooperation, and strengthening of multilateral frameworks. India believes that counter-terrorism should not be hollowed out by false equivalences or politicized narratives.
3: Russia launched drone and missile attack on Ukrainian capital overnight, killing at least 20 civilians and injuring more than 90 others. Damage was recorded in 30 locations across Kyiv, mainly residential buildings and civilian infrastructure. Russia's defense ministry said in a statement that the deadly bombardment was in response to Ukraine's long-range strikes on its civilian infrastructure. In Jammu and Kashmir, the first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra today reached the twin base camps at Nunwan in the Pahalgam area of Anantnag district and Baltal in Ganderbal district under tight security. The 57-day pilgrimage to the Holy Cave Shrine was formally flagged off from Jammu in the early hours by Lieutenant Governor Manoj Sinha. The Yatra will officially begin tomorrow and is scheduled to culminate on 28th of August. More from a correspondent.
1: The convoy which departed from Bhagwati Nagar Yatri Nivas in Jammu in the wee hours today crossed into the valley this afternoon under a multi-tier security cover. The first batch comprises of 4,822 Yatris, of which 2,510 are scheduled to trek via Pahalgam route, while 2,312 will take Baltal route early tomorrow morning. Upon

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

0: अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
1: उंगली में अंगूठी।

0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना,
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
1: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

0: क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त से ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त से ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। कार्यक्रम खेल जगत सुनने वालों को संजय शर्मा का नमस्कार।

फीफा विश्व कप 2026 में खेल रहे दिग्गजों की पहली बार टक्कर आज रात भारतीय समय अनुसार टोरंटो में होने जा रही है। यह मुकाबला पुर्तगाल और क्रोशिया के बीच राउंड ऑफ 32 में होगा, जिसमें दो दोस्त आमने सामने उतरेंगे। कभी एक ही क्लब रियल मैड्रिड में रहकर दूसरे के गोल में मदद करने वाले ये दो दिग्गज हैं। पुर्तगाल के 41 वर्षीय रोनाल्डो और क्रोशिया के 40 वर्षीय लुका, जिनमें से एक की विदाई इस मैच के साथ विश्व कप से हमेशा के लिए हो जाएगी। रोनाल्डो और मैड्रिड दोनों ही अपने अपने पहले फीफा विश्व कप खिताब की तलाश में हैं। रोनाल्डो के करियर में एक बार की बात करें तो पुर्तगाल उनके पदार्पण विश्व कप 2026 में सेमीफाइनल तक पहुंचा था, जबकि मोद्रिच की कप्तानी में क्रोशिया विश्व कप 2018 के फाइनल में हारकर खिताब से एक कदम दूर रह गई थी। विश्व कप 2022 में भी मोड्रिच कप्तानी में क्रोशिया अंतिम चार तक पहुंचकर थम गई। ऐसे में इस बार ये खिताब जीकर अलविदा करना चाहेंगे।

एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 135वां संस्करण 25 जुलाई से 23 अगस्त तक आयोजित होगा। इस बार 24 टीमों के बीच पांच शहरों कोलकाता, रांची, इम्फॉल, शिलांग, गुवाहाटी में चार मुकाबले होंगे। उद्घाटन और फाइनल कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण साल्ट लेक स्टेडियम में होंगे। डूरंड कप आयोजन समिति ने बुधवार को भाग लेने वाली सभी टीमों और मेजबान शहरों के कार्यक्रम की घोषणा की है। इस बार भी टूर्नामेंट में इंडियन सुपर लीग, आई लीग सर्विसेज टीमों और विदेशी सैन्य टीमों का मिश्रण देखने को मिलेगा। सात टीमें पहली बार खेलेंगी डूरंड कप। सात टीमें पहली बार डूरंड कप में हिस्सा लेंगी। इसमें श्रीलंका सशस्त्र बलों की डिफेंडर्स, एफसी मेघालय प्रीमियर लीग, नोंके स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चर क्लब, बागपत एफसी, एफसी रंगदाई, मुंबई एफसी इस शामिल होंगी। टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 17 बार चैंपियन मोहन बगान सुपर जॉइंट, 16 बार की विजेता ईस्ट बंगाली एफसी, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, साउथ यूनाइटेड एफसी, सीआईएसएफ भारतीय सेना की टीम में खिताब की प्रमुख दावेदार हैं।

भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन, हमवतन अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर एक T20 वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ICC की ओर से बुधवार को जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में ईशान किशन 876 रेटिंग रैंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गए हैं, जबकि उनसे 7 अंक कम अभिषेक दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अभिषेक ने करीब 12 महीने बाद अपना शीर्ष स्थान जो है गंवाया है। ईशान किशन अब विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और अभिषेक के साथ चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जो T20 में नंबर वन बने हैं। ईशान किशन ने T20 विश्व कप में करीब 200 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए थे। इनमें पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए बेजोड़ 77 रन भी शामिल हैं। हाल ही में T20 उपकप्तान बने तिलक वर्मा छठे स्थान पर कायम हैं। पूर्व कप्तान सूर्य कुमार यादव एक पायदान नीचे 8वें नंबर पर खिसक गए हैं। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती व जसप्रीत बुमराह एक एक स्थान नीचे क्रमशः तीसरे और छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड इंग्लैंड के जो रूट को 2 स्थान पीछे छोड़कर पहली बार नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक स्थान सुधार के साथ छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ट गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार को हुए पहले T20 मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को पदार्पण का मौका नहीं मिला। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलने वाले वरुण चक्रवर्ती की टीम में वापसी हुई है। रवि बिश्नोई को भी अंतिम एकादश में जगह मिली है, जबकि प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, सूर्यांश शेगड़े बाहर कर दिए गए हैं। पहले T20 मैच की अंतिम 11 भारतीय टीम संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती हैं।

संगीत के बाद कार्यक्रम खेल जगत में आपका फिर से स्वागत है। देश को पहली बार एशियाई कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाने वाली हरियाणा की अलीशा चौधरी के एशियाई खेलों में भाग लेने पर तलवार अभी तक लटकी हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अलीशा और कराटे टीम के दूसरे सदस्यों के नाम एशियाई खेलों की लॉन्ग लिस्ट में नहीं भेजे हैं। अलीशा ने 21 जून को ही बाली में कुमित्ते के 55 किलो भार वर्ग में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। वह एशियाई खेलों में भी पदक दिलाने के लिए दावेदार हैं, लेकिन उनके भाग लेने की उम्मीदें बहुत ही कम नजर आ रही हैं। एशियाई में शायद उन्हें भेजा जाए। कराटे और हैंडबॉल के भारतीय संघों को उनके अंतर्राष्ट्रीय संघों से मान्यता मिली हुई है, लेकिन खेल मंत्रालय उन्हें मान्यता अभी तक नहीं दे पाया है, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। कराटे खिलाड़ी अक्षय ने एशियाड की अनुमति के लिए कोर्ट में शरण ले ली है।

सितंबर में 6 मैच खेल सकते हैं भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थगित क्रिकेट सीरीज एक बार फिर पटरी पर लौटती दिख रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साल 2026 और 27 में होने वाली घरेलू सीरीज के मीडिया राइट्स, टीवी और डिजिटल अधिकार के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर सितंबर 2026 में होने वाला भारत का बांग्ला दौरा शामिल है, जिसमें 3 वनडे, 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाने हैं। यह सीरीज पिछले साल दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मुद्दों के चलते टल गई थी। बांग्लादेश की टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड के प्रशासन में बड़े बदलाव हुए हैं। हालांकि BCCI ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम सीरीज होने का मजबूत इशारा कर रहे हैं। हाल ही में BCCI सचिव देवजीत सैकिया, उनका मानना था कि बोर्ड बांग्लादेश के नए प्रशासन को लेकर चिंतित नहीं है और ये इस मामले में भारत सरकार की सलाह के अनुसार ही आगे का फैसला लेंगे। सीरीज की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि BCCI ने अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ 3 अतिरिक्त T20 मैच खेलने का अनुरोध ठुकरा दिया था, ताकि इस समय बांग्लादेश के दौरे के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

भारत के ध्यान संतोष ने जूनियर एशियाई बैडमिंटन में थाईलैंड के छठी वरीयता प्राप्त पुनतत को हराकर उलटफेर किया है। संतोष ने पहले दौर के मैच में 21-17, 21-18 से इनको मात दी। लड़कियों के एकल में तन्वी पत्री ने इंडोनेशिया की क्रिस्टा वेल को 21-18, 21-6 से हराया। पांचवीं बरिया रूपा रेलिया ने श्रीलंका की पुमदू को 21-13, 16-21 और 21-7 से हराया।

भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने भारत के ही अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जो करीब एक साल इस पोजीशन पर थे। अब ईशान 1876 और अभिषेक के 1869 रेटिंग पॉइंट्स हैं। ईशान T20 शीर्ष में पहुंचने वाले भारत के चौथे वेटर हैं। अभिषेक के अलावा कोहली और सूर्य कुमार भी ऐसा कर चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों में तिलक वर्मा छठे और सूर्य कुमार आठवें नंबर पर पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया में नॉर्वे टीम का नाम चलाने वाला वाइकिंग रॉ सेलिब्रेशन छठे महीने पहले एक पब में हुई थी इसकी शुरुआत, और अब यह सेलिब्रेशन नॉर्वे के इतिहास से जुड़ा। वाइकिंग शब्द का अर्थ घर से बाहर जाकर जीतना है। कार्यक्रम में अब ले चलते हैं आपको फिर से संगीत की ओर।

0: इसी के साथ खेल जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल। ये मुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच होगा।
1: कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20। This is Akashvani. We now bring you ball-by-ball commentary of the second semi-final T20 cricket match to be played between England and South Africa of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program

0: जाए रात।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिव्य कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये पारंपरिक गीत। आइए रंग तरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।

ये थी ऋचा शर्मा की आवाज़, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना। लिखा है माया गोविंद ने, धुन बनाई है राज कमल ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में आपने सुना ये गाना। गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचा कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज़, मोहसिन नकवी का कलाम।

ये थी रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। रंग

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बावरा का गीत, सोनिक ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना सुन रहे थे जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे वारिस। फिल्म का ये गाना वर्मा मलिक के बोल उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज़ में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियाँ चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लो गर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है, तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नज़र आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफ़र में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में

0: हमें फूल और कलियां नजर आईं तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से तीन तीन फूल खिल रहे हैं। आज तीसरा दिन है और कल चौथे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियाँ देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज़ पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियाँ देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो, अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है मोहब्बत में, मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नज़र डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता माँ।

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा। इसलिए कुछ गीतों को हमने छांट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम। लेकिन एक सवाल और है, आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियाँ छिपी हुई हैं। आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है। उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी, और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थी, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से, और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो ज़रूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं, पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है, बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है। और बारिश जल्द ही आ जाए, हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसे

अंदाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है। धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे?

जब आप मिला, वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि उस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं, और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज़्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफ़र शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब यह बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है, उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

धरती पे वहाँ एक अब्र जवा, देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, ओ हो, और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा। मौसम की शरारत का मंजर कोई देखे, कोई देखे, दिल थाम चल

0: इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने भी लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफ़ी जी, सुमन जी, शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नज़रों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरा सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोख कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए, सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए, फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं 4th ईयर कॉलेज में था, इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं नहीं

सलिल चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज़ में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है, और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम। जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज़्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफ़ी साहब की गीत के इस आवाज़ को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही हैं कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, ज़रूर वहाँ बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहाँ तक पहुँचे। और अब ये गाना आप सब के लिए, ज़रा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल

देखने गई थी, वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे, जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नज़ारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था, हम रंग गिनने लग जाते थे। शहरों में कम दिखाई देता है। मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह, वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ, ये टोटका तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियाँ होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा ख़राब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाएँ, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है, हमें ज़रूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। एक और श्रोता ने कहा है, रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है। शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो, या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है। सात सतरंगी सपने भी होते हैं, और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी, तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सुनकर वो मुस्कुराई। ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह, बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं, वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है। मुकेश जी की आवाज़। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो, लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं, जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं, और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना ना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा, ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा, अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

0: पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज़ दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं, रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए खूब सारी क्लिक्स लेते हैं, लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतज़ार है, लेकिन कुदरत भी और इंतज़ार करा रही है, इंतज़ार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालेख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं, जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है, ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है, सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत। और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात हो गई लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुँचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज़्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

इशारे ये अदाएं, मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराबी